0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। दो दिन की बैठक में तीन प्राथमिकता क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक से ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत सांस्कृतिक साझेदारी मजबूत करने तथा संस्कृति के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त होती है। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्य रूप से आरंभिक बाल्यावस्था में समुचित देखभाल और शिक्षा, कौशल विकास सहयोग बढ़ाना तथा अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर विचार होगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति, लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। इससे पहले लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित किया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश के संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। इसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। संसद की कार्यवाही आज दिन के 11 बजे से शुरू होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी के जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि वहां की वास्तविकता विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही हिंसा है।
1: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेगी। पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही हैं। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप आज से शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्य भारतीय टीम हिस्सा लेगी।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित, भारत ने हमले की कड़ी निंदा की। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजीसी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और

0: विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को नवीं वरीयता मिली। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पांचवीं वरीयता। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे औलैया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 13 भारतीय थे।
1: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया जाना बंद होना चाहिए और क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध नौवहन और व्यापार शीघ्र बहाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है।
2: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि अगले महीने 12 और 13 तारीख को भारत की मेजबानी में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को आमंत्रित किया गया है। भारत इस साल ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह बैठक आज और कल भोपाल में आयोजित होगी।
3: भोपाल में आज से ब्रिक्स देशों की बड़ी सांस्कृतिक बैठक शुरू हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ये आयोजन 8 अगस्त तक चलेगा। इसमें ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठकें होंगी। इसके चलते भोपाल को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तरह सजाया गया है। इस आयोजन से सांस्कृतिक संवाद बढ़ेगा और सदस्य देशों के बीच सहयोग मजबूत होगा। पहले 2 दिन अधिकारी स्तर पर चर्चा होगी जबकि आखिरी 2 दिन मंत्री स्तर पर घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत ने इस बैठक में 2 अहम प्रस्ताव रखे हैं। पहला, कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी के लिए साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना और दूसरा, यूनेस्को में सदस्य देशों के साथ मिलकर साझा नामांकन भेजने की पहल करना। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषणा करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय, मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। यह आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान प्रणाली मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है।
1: झारखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस समय युवाओं के आक्रोश और आंसुओं का गवाह बना हुआ है। जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन विडंबना देखिए, व्यवस्था का रुख इतना कड़ा है कि कड़ाके की धूप और खुले आसमान के नीचे बैठे इन प्रदर्शनकारियों को पीने का पानी, खाना और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पा रही है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने इस मुद्दे पर विपक्ष के मौन रहने पर तीखा हमला बोला है। आंदोलन पर बुनियादी संकट गहराने के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
2: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को एमसीसी पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं।
3: वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट में इस विशेष पहल को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वायदा किया था। इस निर्णय से राज्य भर में लाखों वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने महिला कल्याण विभाग को 1,094 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किए हैं, जिससे निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। केरलम में आज भी तेज वर्षा जारी रहेगी। हालांकि कल की तुलना में आज बारिश में कुछ कमी का अनुमान है। असम में लगातार तेज बारिश जारी है और इससे राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने असम के लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर

0: दिया है और अगले 24 घंटों में पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पीवी सिंधु को बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में नवी वरीयता दी गई है। यह चैंपियनशिप 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पुरुष डबल्स में पांचवी वरीयता मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में 14वीं और ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में 15वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। चैंपियनशिप की पांचों स्पर्धाओं में भारत के दो दो खिलाड़ी भाग लेंगे। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमरीका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्यों वाली भारतीय टीम हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। अमृत उद्यान का 15 सितंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। अमृत उद्यान में प्रवेश निशुल्क है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर साइबर ठगी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश और एयर इंडिया की फ्लाइट 2379 के अचानक हवा के दबाव में फंसने से यात्रियों की हुई कठिनाई के समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। जनसत्ता का शीर्ष समाचार है, साइबर ठगी वाले खातों से निपटने के लिए 4 हफ्ते में बने मानक संचालन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट। दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, 4 सप्ताह के भीतर म्यूल खातों से निपटने को SOP बनाए RBI। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाथों पर नियम बनेंगे। पंजाब केसरी ने एयर इंडिया विमान की उड़ान संख्या 2379 के समाचार को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। शीर्षक दिया है, एयर इंडिया विमान टर्बुलेंस में फंसा, पत्र ने इस घटना में घायल यात्रियों की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को शीर्षक दिया है, थाईलैंड से दिल्ली आ रहा विमान टर्बुलेंस में फंसा, DGCA ने जांच के आदेश दिए। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, जन्म मृत्यु पंजीकरण सुरक्षा उपाय नागरिकों की मुश्किल ना बने।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट UG काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। और मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस, इंडिया फ्लैगशिप सिंक्स आफ्टर अटैक इन रेड सी, ऑल 13 इंडियन सेलर्स रेस्क्यूड, इंडिया कंडेम्स अटैक ऑन कमर्शियल वेसल। Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy review this morning. Supreme Court asks RBI to prepare SOP for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. Online registration for first round of NEET UG counseling 2026 to commence today. IMD warns of very heavy rainfall in Assam and Meghalaya today. And in badminton, PV Sindhu seeded 9th, while Satvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty get 5th seeding for BWF World Championships. And now the news in detail. An Indian-flagged commercial vessel, MSV Faiz Noor-e Aulia, sank in the Red Sea after coming under attack off the coast of Yemen yesterday. All the 14 seafarers, including 13 Indian nationals who were on board the vessel, were rescued safely. We have a report.
3: According to reports, the Indian flag tanker was carrying oil from Saudi Arabia. Union Minister of Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, said that the vessel was hit by a projectile near Yemeni waters, causing the vessel to capsize and sink. Mr. Sonowal said India strongly condemns this unprovoked attack on the defenseless mechanized sailing vessel. He said the safety of our people is our supreme

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात, आप सभी का दिल से स्वागत है मस्त मुंबई में। मैं हूं आपका मनमीत आरजे अमित। आपने ट्यून इन किया है 107.1 एफएम रेनबो। आई जस्ट वांट टू से गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीबॉडी। स्टे कनेक्टेड ओनली ऑन 107.1 एफएम रेनबो, क्योंकि ये सफर सुहाना होने वाला है।

सुहाना सफर और ये मौसम हंसी जरूर होगा मस्त मुंबई में आपका मनमित आरजे अमित के संग, जो कहता है कि बिखरने के लाखों बहाने मिल जाएंगे। अजी बिखरने के लाखों बहाने मिल जाएंगे, आओ हम जुड़ने के अवसर ढूंढे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज सपनों की इस नगरी में हर गली एक नई कहानी है और यहां हर एक राही चलता फिरता मतवाला राही है। नमस्कार और मुंबई के पब्लिक को मेरा यानी आरजे अमित का सलाम। कहते हैं कि ये शहर कभी सोता नहीं है और यहाँ के लोग तो कभी रुकते भी नहीं है। तो स्वागत है आप सबका जहां रफ्तार ही जिंदगी है, मस्ती ही बंदगी है। स्वागत है मस्त मुंबई के सेगमेंट मुंबई के मतवाले राही में। मुंबई के मतवाले राहियों, आपका मनमित आरजे अमित लेकर आया है 107.1 एफएम रेनबो पर मस्त मुंबई का ये एनर्जेटिक सेगमेंट। आइए आज के दिन को सेलिब्रेट करेंगे आपके हम सफर बनकर। क्या आप भी तैयार है हमारे हम सफर बनने के लिए? बताइए 8657661071 इस व्हाट्सएप नंबर पर आपके रिप्लाई। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज एंड डू लिसन दिस ब्यूटीफुल नंबर संग बाय मुकेश जी एंड लता जी।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

अगर आपके पास गाड़ी है, गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, पीयूसी नहीं है, तो एक बात का ख्याल रखना, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि फ्यूल नहीं मिलेगा। आप जाओगे पेट्रोल पंप पे और आप कहोगे यार ये कैसे चलेगा। कुछ लोग इस बात पे भी अड़े हैं, भाई पेट्रोल की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो मतवाले राही हैं मुंबई के और चलते हैं मुंबई के लोकल ट्रेन के जरिए अपने ऑफिस की ओर, अपने काम की ओर, या फिर हमारे ऐसी जगह की ओर जहां हम जाना चाहते हैं। अब देखिए, अगर आप भी मुंबई के मतवाले राही बनकर एफएम रेनबो से जुड़ना चाहते हैं तो जगन्नाथ केदारी जी जैसे हमें लोनावला खंडारा से कॉल करके कहते हैं कि देखो मैं तो ये दुनिया देख नहीं सकता मेरी आंखों से, मगर यहाँ का नज़ारा देखने के लिए कई सारे लोग लोनावला चले आते हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ की खूबसूरती जो आपने आपकी आंखों से देखी है वो मैंने मेरे दिल से देखने का प्रयास किया है, और वो हमें दिखाती है एफएम रेनबो की टीम आरजे अमित के साथ और गानों के जरिए, जो मैं देख पाता हूँ शायद कोई और नहीं देख पाता होगा। जगन्नाथ जी आपका तहे दिल से स्वागत है। और कौन कौन जुड़ा है जल्दी जल्दी बताइए, 8657661071 इस व्हाट्सएप नंबर पे। मैं हूँ आपका मनमित आरजे अमित, आपके मैसेज का इंतजार रहेगा। सुनते रहना मस्त मुंबई एफएम रेनबो पर।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू शर्तें लागू आज ही संपर्क करें
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
3: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर
0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
5: सपनों की नगरी में मुंबई के मतवाले राही इस सेगमेंट में मैं आपका मनमीत आरजे अमित 5 अगस्त के अतीत के पन्नों में अगर झांक के देखूं तो 5 अगस्त ये वर्ष 2019 और 2020 की दो घटनाओं को भारत के इतिहास के सुखद और स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होने वाली घटनाओं को हम सभी के सामने रखता है। आप कहेंगे ऐसा क्या हुआ था? 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के दिव्य क्षण की प्रतीक्षा और संघर्ष में राम भक्तों के कई पीढ़ी

रचना अपने आराध्य प्रभु श्री राम मंदिर बनाने की अधूरी कामना के साथ उनके श्री चरणों में लीन हो गई थी। राम भक्तों के संघर्ष, त्याग और तप की पूर्णा होती हुई थी। 5 अगस्त का यही दिन आधुनिक दीपावली के त्योहार के समान हर किसी के लिए है। आइए लता जी की आवाज में इसी बहाने रामचंद्र जी का भजन हो जाए। सुबह सुबह हम सभी को एक दिव्य शक्ति का अनुभव कराएगा।

जब सबके दाता राम। अरे राम नाम राम नाम राम नाम जपना पराया माल अपना, पराया माल अपना हो। ओ राम नाम जपना रे राम नाम जपना पराया माल अपना हो। राम नाम जपना रे राम नाम जपना पराया माल अपना हो। ओ राम नाम जपना रे राम नाम जपना पराया।

राम नाम राम नाम राम नाम जपना पराया माल अपना पराया माल अपना हो ओ राम नाम जपना रे राम नाम जपना पराया माल।

आज हमारे संग जुड़ने वाले कई सारे श्रोता है, हर किसी की चाहत अलग अलग हो सकती है। बस मेरा कहना यही है, चाहे सुरेश बावकर जी हो, सुरेश विश्वनाथ काशीनाथ पाटिल जी हो, महेश बोहरा, प्रणव शिंदे, प्रकाश शिंदे, सरोज पाटिल मीरत से, प्रमोद चिंचोलकर, दीपाली शिरोडकर, सुरेश पाटिल, अविनाश कड़ू, राकेश माथुर, फिरोज सिगानपुरिया, दीपा पालकर, विश्वास चांदोरकर और विजेंद्र घटोल जी, महेश भाटकर, रजनीकांत पाटिल, दत्तात्रेय आदत, अंजू हैं अंधेरी से, श्रीकांत कुंभार कराड़ से, सुरेश बावकर हैं, कृष्णानंद कामत हैं सिडनी से हमें मैसेज करते हैं, मंगेश मात्रे जी हैं, गीता विचारी, आर्यन सोमवंशी, हितेंद्र दास, श्रीपाद जोशी, बालकृष्ण पाटिल और हमारे से जुड़ने वाले इन सभी में नम्रता सावंत ये भी नाम आ गया है, किरण जी जुड़े हैं, इन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। जगन्नाथ केदारी जी भी हैं। अब बस मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप FM रेनबो सुन रहे हैं RJ अमित के संग, तो सिर्फ मेरे साथ जुड़ना नहीं है, उच्च सुर में गाना भी है। अरे गा के देखो सुबह सुबह यार, आपकी नींद तो खुली जाएगी मगर आपके वजह से चार लोग और जाग भी जाएंगे। हाँ भाई, बस थोड़ा सुर में गाना, किशोर दा के संग, कल जिनका बर्थडे था, है ना।

भूल गया यार। ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया

दुनिया के बोझ को सर से उतार दे, चिंता के भूत को बंदूक मार दे। क्यों भाई मैंने ठीक कहा? हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, अरे तब फिर मैंने ठीक कहा। ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया

0: दुनिया को मार दे बाटे के बूट पर, क्यों भाई मैंने ठीक कहा।
1: हाँ हाँ तुमने ठीक कहा,
0: अरे तब फिर मैंने ठीक कहा। ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में।

0: की है जो कि डैम फूल है। क्यों भाई मैंने ठीक कहा?
1: तुमने बिल्कुल ठीक कहा।
0: ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में अपना बैंड बजाए जा।
2: के दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
3: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
4: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स.
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल. FM रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं. दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि इतिहास के पन्नों में अगर झांक के देखें तो 5 अगस्त ये दिन दो अलग अलग घटनाओं के लिए याद आता है. 2019 की बात तो मैंने बता दी है ना, 2020 की, बट 2019 में क्या हुआ था. 2019 का दिन कश्मीर घाटी में बढ़ रहे अलगाववाद पर बहुत शक्तिशाली प्रहार था. आपको याद है, आपने न्यूज में देखा होगा. इस प्रहार की चोट इतनी गहरी थी कि पड़ोस का देश भी बिलबिला रहा था.

आज अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के भारत का अभिन्न अंग होने की राह में अनुच्छेद 370 की समाप्ति होना एक ऐतिहासिक दिन था। हमने कई बार फिल्मों में कश्मीर कैसा है वो देखा है, चाहे कश्मीर की गली फिल्म का ये गाना क्यों ना हो, मगर इसी बहाने जब 370 हटाने की बात आती है तो ये दिन हर किसी के जहन में रह जाता है। चलिए, बरसात के दिन भले ही हम क्यों ना फील कर रहे हो, मगर इस गाने के साथ कश्मीर की वादियों में थोड़ा सा घूम के आए। सुनते रहना FM रेनबो पर मस्त मुंबई कार्यक्रम, आपका मनमीत आरजे अमित के साथ।

आपको पता है आज का इतिहास हमें एक और नाम की ओर ले जाता है। पहली महिला हाईकोर्ट चीफ जस्टिस पता है कौन थी? 5 अगस्त 1991 को भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा था दोस्तों, जब लीला सेठ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनी थी। वो देश के किसी भी हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस थी। उन्होंने न्यायिक सेवा में महिलाओं की भागीदारी को नई पहचान दिलाई थी और उनके इसी मुकाम को भारतीय न्यायपालिका में ऐतिहासिक उपलब्धि माना जाता है। अब देखिए, महिलाओं की अगर बात करें तो आज आपका मनमीत आरजे अमित एफएम रेनबो पर नमस्ते भारत इस प्रोग्राम में जीते हैं शान से सेगमेंट में आपको एक ऐसी ही महिला से मुलाकात करवाने वाला है जिनका नाम है उल्का देवरुखकर। कलाकार हैं एवं संस्कृति की और विरासत की समर्थक भी हैं। तो कला से प्रेरणा, संस्कृति से पहचान और जुनून से उद्यम की शुरुआत, इस सब्जेक्ट पर आज हम उनसे बात करेंगे गपशप विथ आरजे अमित इस सेगमेंट में। तो आप सभी का इंतजार रहेगा 10 से 11 के बीच भी, बने रहना एफएम रेनबो पर आपका मनमीत आरजे अमित के संग। फिलहाल आप सभी के लिए मुन्ना डे की आवाज में गाया हुआ एक बहुत ही प्यारा सा अंदाज़।

0: कमा।
1: डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित।
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: ईकेवाईसी,
2: एनईएफटी, आरटीजीएस,
1: आईएमपीएस,
2: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य घर।
7: आज आप सभी के लिए प्रोग्राम मस्त मुंबई में बहुत सारे गीतों का चयन मैंने तो किया हुआ है, मगर इन गीतों के साथ साथ आज आपको कुछ ऐसी बातें भी मैं बताना चाहूँगा जो कि हमारे निजी जीवन से जुड़ी हुई हैं। आपको बताएं, घाना में चॉकलेट का अगर पेड़ काटा ना तो जेल हो सकती है। ये बात आपने कभी सुनी होगी? मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो नहीं सुनी, मगर घाना में ये रूल है। जी हाँ, चॉकलेट बनाने वाले कोको के पेड़ों की खेती छोड़ना या खेत का दूसरा इस्तेमाल करना भी भारी पड़ सकता है घाना के लोगों के लिए। और वहां के संसद ने ऐसा विधेयक पारित किया है जिसके तहत बिना सरकारी अनुमति ऐसा करने पर 20 साल तक की जेल हो सकती है। भाई यहाँ पे तो चॉकलेट खाने में भी दिक्कतें हो जाती है यार, चॉकलेट का पेड़ लगाएगा कौन और लगाएगा तो तोड़ेगा कौन, है ना? क्योंकि बच्चों के लिए तो चॉकलेट सबसे ज़बरदस्त है। आज हम चाहते हैं ऐसी ही मिठास भरी गीतों की ये दास्ता हम आप सभी के लिए लाए, क्योंकि नील आर्मस्ट्रांग की जयंती भी आज है, ऐसे हमारे कई श्रोताओं ने हमें बताया। तो चलिए इसी बहाने मोहम्मद रफी ने गाया ये गाना आप सभी की नजर करते हैं। कीप लिसनिंग 107.1 FM रेनबो विद आपका मनमीत आरजे अमित।

आज लोनावला के जगन्नाथ केदारी जी हमें मैसेज करते हैं और कहते हैं कि हम हमारे सभी साथियों के संग बैठे हैं, चाय का ये माहौल बहुत ही लुभावना होता है सुबह के वक्त, बट सब साथ में जब बैठ के चाय पीते हैं ना, तब ऐसे लगता है कि यार दिलों के करीब कोई गाना हो और वो गाना अगर हम सुने और हम सभी के लिए आप डेडिकेट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए, हम चाहते हैं कि ये नज़ारा जो देख नहीं सकते उनके लिए ये बात हम ज़रूर उन तक पहुँचाएं। लता मंगेशकर की आवाज़ है और फिल्म अनीता से ये अंदाज़ है राजा मेहदी अली खान साहब।

लिखा हुआ। यह गाना हम सभी को बतलाता है, रखा करो नजदीकिया, जिंदगी का भरोसा नहीं। फिर कहेंगे चुपचाप चले गए और बताया भी नहीं, तो करीब रहना FM रेनबो के और आपका मनमीत आर्जा मीत के।

आज ठीक 10 बजे आप समाचार सुनेंगे और समाचार के उस पार नमस्ते भारत में आप उल्का देवरुखकर इनसे गुफ्तगु सुनने वाले हैं गपशप विद आरजे अमित इस सेगमेंट में। तो आप सभी से गुजारिश रहेगी कि कलाकार किस तरह आदिवासियों के लिए काम करते हैं, अपने रंगों के जरिए कई सारे अलग अलग चित्र बनाकर लोगों का ध्यान खींचते हैं और साथ ही साथ औरों के जीवन में खुशियों के रंग भरते हैं। चलिए, अगर किसी की जवानी किसी के ऐसे काम आ रही है तो मस्त ही होगा ना वो समा।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना। कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। एनरिचिंग लाइफ।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ऍप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
2: देखते देखते 9:47 हो चुके हैं दोस्तों. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM रेनबो पर मस्त मुंबई कार्यक्रम, आपका मनमीत आरजे अमित के संग. आज मस्त मुंबई में हम कुछ ऐसी हस्तियों को भी याद करना चाहेंगे जिनका आज जन्मदिन है. काजोल, धनुजा इनकी बेटी, और नानी शोभना समर. मतलब देखिए, 3 जनरेशन फिल्मों में काम करती रही, मगर हर किसी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई. दूसरी छोर वेंकटेश प्रसाद भारतीय क्रिकेटर है, वो भी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. और हमारे कई सारे श्रोताओं ने भी हमें इत्तला कर दिया है कि

आज और भी कई लोगों के जन्मदिन हैं, जैसे कि जेनेलिया डिसूजा आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। हम आपके आइकॉन फिल्म 5 अगस्त को 1994 में रिलीज हुई थी और आज इस फिल्म को 32 साल पूरे हो गए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये फिल्म कई बार देखी होगी। मैंने खुद मेरी जिंदगी में 13 बार इस फिल्म को देखा है, 13 बार, यू वोंट बिलीव। यस, और मुगले आजम ये फिल्म रही ना, जो ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में मुगले आजम आई थी हमारे दिलीप कुमार साहब की, तो वो फिल्म आज 66 साल पूरे कर रही है। प्रणव शिंदे जी हमें इस बात से इतला कर देते हैं, तो हम चाहते हैं कि जितने सारे लोग हमारे संग जुड़े हैं वो बस यूं ही बने रहें। और अगली पायदान पर अगर हम मुगले आजम फिल्म की ये कव्वाली आपको सुनाएं, लता मंगेशकर और शमशाद बेगम ने गाई, तो आपको फिल्म की यादें तरोताजा हो जाएगी। बैक टू बैक आ रहा है हम आपके आइकॉन फिल्म का गाना, बने रहना एफएम रेनबो पर, 10 बजे सुनना समाचार और समाचार के उस पार। नमस्ते भारत में मिलेंगे उल्का देवरुखकर इस हमारे मेहमान से।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: FM रेनबो पर जुड़ने वाले हमारे सभी श्रोताओं का मैं आपका मनमीत आर्जे अमित तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मगर देखिए, यह सफर अब तक तय नहीं हुआ है, ये कुछ पलों के लिए हम रोक रहे हैं। बस 10 बजे समाचार सुनाएंगे, समाचार के उस पार आपको ले जाएंगे नमस्ते भारत इस प्रोग्राम में, जिसमें हम उल्का देवरुखकर जी से बात करने वाले हैं गपशप विद आर जमीद सेगमेंट में। जीते हैं शान से इस सेगमेंट में नमस्ते भारत में। ये महिला किस तरह अपने काम से अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई हैं, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। अगर आप भी अपने सवाल पूछना चाहेंगे तो ज़रूर हमें बतलाएं FM रेनबो पर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 8657661071। ठीक 10 बजे समाचार सुनना मत भूलिएगा, बने रहना FM रेनबो पर आपका मनमीत आरजे अमित के संग।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर अब तक के प्रमुख समाचार। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे उलैया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया, इनमें से 13 भारतीय थे। समाचार में आगे, भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। यह बैठक आज और कल भोपाल में आयोजित होगी। समाचार में आगे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अनेक शैक्षणिक संस्थानों के संस्थापक डॉ डी वाई पाटिल का कल कोल्हापुर में निधन हो गया, वे 90 वर्ष के थे। और समाचार के अंत में, दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज ईशारानी बरुआ ने दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी ली सो ही को 18-21, 21-15, 7-21 से हरा दिया। प्रतियोगिता में तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत सहित भारत के शीर्ष खिलाड़ी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम नमस्ते भारत।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार दोस्तों, नमस्ते भारत में मैं आपका मनमीत आरजे अमित आप सभी का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। नमस्ते भारत में जीते हैं शान से इस सेगमेंट में आज गपशप विद आरजे अमित करने कौन आ रहा है पता है? आ रही है एक ऐसी कलाकार और भारतीय कला संस्कृति एवं विरासत की सशक्त आवाज जो कि कारीगर की संस्थापक है, जहां पारंपरिक कला और हस्तशिल्प और कारीगरों की कहानियों को एक नई पहचान मिलती है। कला संस्कृति और अपनी रचनात्मक दृष्टि के माध्यम से वो भारतीय विरासत को आधुनिक मंच से जोड़ने का निरंतर प्रयास कर रही हैं। एक ऐसी महिला जो अपनी वाली पेंटिंग के जरिए कई आदिवासियों के जीवन में उजाला लाती हैं, किसी की मददगार ठहरती हैं, अपने चित्रों के जरिए किसी को खुश देखने का प्रयास करती हैं, तो किसी के चित्रों में खुद एक अनोखा रूप बनकर सामने आती हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, बहुत कम उम्र में एक अच्छी इंसान के तौर पर या अच्छी उद्योजिका के तौर पर जिन्होंने काफी मकबूलियत पाई, ऐसी उल्का देवरुखकर का हम एफएम रेनबो के इस सेगमेंट में तहे दिल से स्वागत करते हैं। उल्का जी नमस्कार।
2: नमस्कार भारत, नमस्कार अमित जी।
1: यस, आपका तहे दिल से
2: प्यार भरा नमस्कार।
1: अरे वाह, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में एफएम रेनबो पर। आज हमें खुशी है कि आप अपने कीमती समय में से वक्त निकाल कर आई हैं और आपके लिए हमने कई सारे सवालातों की तैयारी जरूर करी है, मगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके लिए कला सिर्फ अभिव्यक्ति है या फिर जीवन जीने का एक तरीका?
2: मेरे लिए कला

0: तो जीवन जीने का तरीका है, मेरे लिए कला ही जीवन है एक्चुअली।
1: अच्छा
0: मैं कला को जीवन ही समझती हूँ। आई माई सेल्फ मेड आर्ट इज माई लाइफ।
1: अच्छा आप मुझे एक बात बताइए कि आपने ये कब सोचा कि आप कलाकार बनेंगे और कैसे, किसी से प्रेरित हुई या फिर कैसे ये सफर शुरू हुआ?
0: बचपन से ही, मतलब जैसे देयर इज नो प्रॉपर टाइम फॉर इट, मतलब जैसे मैं स्कूलिंग में चालू हुआ, मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, मेरे में ये इनबिल्ड ही था, दिस वाज इनबिल्ड इन मी। मुझे याद है कि जब मैं नर्सरी में थी, मैं सीनियर केजीज में थी, मेरे पास अभी भी स्कूल के सर्टिफिकेट है, ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन में फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट है, या फिर क्राफ्टिंग में है, वर्क एक्सपीरियंस में है। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, जैसे कॉलेजेस में गई, आई स्टार्टेड टेकिंग अप क्लासेस फॉर द स्टूडेंट्स। मैंने घर में होम ट्यूशंस होते हैं, वैसे ड्राइंग क्लासेस चालू किया था। और जब भी कहीं कुछ एक्टिविटीज होते थे, जैसे कभी भी पता चलता था कुछ एग्जीबिशंस है या फिर कुछ आर्ट रिलेटेड है, तो ऑलवेज आई यूज्ड टू बी वेरी, मुझे बहुत एक्साइटमेंट होता था उसका। ऐसा कोई पर्टिकुलर डेट नहीं, मुझे लगता है ये मेरे में इनबिल्ड ही था सिंस माई चाइल्डहुड।
1: अरे वाह क्या बात है, ये भगवान की दी हुई देन होती है मगर उसे संवारना हमारा फर्ज होता है। उल्का जी आज आप हमारे संग बने रहेंगे ठीक 11 बजे तक। हम चाहेंगे आपसे बातें तो करेंगे ही, बातों के साथ साथ बीच में अगर कुछ गाने हो जाए और गानों के जरिए ये सवाल अगर हम हमारे श्रोताओं से पूछे तो वो भी बतलाएंगे ये कौन चित्रकार है जो हमारे संग जुड़ी है। बने रहना FM रेनबो पर, नमस्ते भारत में। हम बात कर रहे हैं उल्का देवरकर से।

आशा भोसले की आवाज में ये कितना प्यारा गाना था, रंग ले आएंगे कागज के फूल ले आएंगे। अब देखिए, अगर हमारे जीवन में कोई ऐसे कोई रंग ले आए और वो भी खुशियों के रंग हो, तो कितना सुहाना दिन होगा, है ना। हम आपसे पूछना चाहेंगे उल्का जी, आज

0: अगर कला की विरासत की अगर बात करें या फिर आपके कुछ उद्यमों की बात करें, उद्योगों की बात करें, तो उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि इस कला ने आपको क्या दिया?
1: कला ने मुझे मेरी आइडेंटिटी दी है, कला ने मुझे जीवन, नया जीवन दिया है
0: जी।
1: कला ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, आगे बढ़ाया, मुझे पहचान दिए।
0: आपने कभी ये सोचा था कि मैं एक कलाकार के रूप में ये काम करते वक्त कभी लोगों के लिए जरूरत के तौर पर खड़ी हो जाऊंगी?
1: नहीं, कभी सोचा तो नहीं था, कभी लगा भी नहीं था कि मैं कलाकार। पहले तो मैं खुद के लिए ही करती थी, जैसे मैं जॉब पे जाती थी, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में थी, तभी मैं खुद के लिए ही अपने प्रोडक्ट्स बनाती थी, लाइक प्रोडक्ट्स बनाती थी नहीं कह सकते, बट जो कुछ फैब्रिक पेंटिंग होता है वो अपने लिए ही, खुद के लिए, ब्लाउज पे कभी पेंटिंग करो, कभी अपने दुपट्टे पे करो, ऐसे किया करती थी।
0: आपको याद है आपने सबसे
1: कलाकार बनने वाली हूँ या फिर मैं बिजनेस फील्ड में, ये कला को मैं बिजनेस फील्ड में टर्न करने वाली हूँ, ये कभी सोचा भी नहीं था।
0: अच्छा, क्या बात है। बिना सोचे जब हम कोई काम कर जाते हैं और अगर वो दिल से हो तो जरूर वो दिल तक पहुंच जाता है। जैसे दिल से दिल तक हमारी बातें और हमारे गाने लोगों तक पहुंचते हैं, इसलिए एफएम रेनबो पर कई सारे श्रोता जुड़े रहते हैं। हम चाहते हैं ले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
2: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
3: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
2: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
3: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: क्या बात है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना आप सुन रहे थे एफएम रेनबो पर। नमस्ते भारत प्रोग्राम चल रहा है। आज उल्का देवरुखकर जैसे हम बात कर रहे हैं, जो कि कलाकार हैं, संस्कृति एवं विरासत के समर्थक हैं। कला से प्रेरणा, संस्कृति से पहचान और जुनून से उद्यम की शुरुआत, इस सब्जेक्ट पर बात करते हुए आज उल्का जी हमें बतला रही हैं कि कैसे चित्रकार के रूप में उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत करी और फिर धीरे धीरे उनके भी लोग बहुत ही जबरदस्त और बहुत सुंदर चित्र बनाने लगे। ये क्या माजरा है उल्का जी, आप मुझे बता पाएंगे?
1: चित्रकार तो मैं खुद थी, मैंने खुद अपने आप को मैंने कोई भी कोर्स नहीं किया है, मैंने खुद अपने आप को ही सिखाया है। यूट्यूब इज माई गुरु एक्चुअली।
0: अच्छा।
1: मैंने खुद अपने आप को सिखाया और मेरा लाइफ में एक मोटो था, माय एम वाज टू बी एन आर्ट इटसेल्फ।
0: ओके।
1: मैंने मेरा आर्ट का ये चालू किया, सीखना चालू किया। ऑलवेज व्हेनेवर आई यूज्ड टू बी इन माय ऑफिस, लाइक जब भी मैं ये बिजनेस में नहीं थी, आई यूज्ड टू नेवर वेस्ट माय टाइम। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था, आई यूज्ड टू ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग कि क्या नया आर्ट आया है, कौन सा नया आर्ट फॉर्म है, तो फाइन आर्ट्स में कौन से लेसन होते हैं, क्योंकि सिंस आफ्टर माई 12th स्टैंडर्ड आई स्टार्टेड वर्किंग।
0: ओके।
1: सो मेरा वो बहुत एक जुनून था कि नहीं, मुझे आर्ट में सीखना ही है, बट लेकिन कभी पॉसिबल हुआ नहीं, क्योंकि आर्ट जो क्लासेस होते हैं या फिर जो कोर्सेज होते हैं वो फुल टाइम होते हैं। तो जैसे भी फ्री टाइम मिलता था, मैं सीखते रहती थी और फिर वो चित्रकारी मैंने चालू की। वारली पेंटिंग मैंने अपने आप ही सीखा, आर्ट फॉर्म सीखे, फाइन आर्ट्स तो मैंने पूरा सोशल मीडिया से, मतलब यूट्यूब से ही सीखा है।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: माय चित्रकारी स्टार्टेड, मैंने खुद अपने आप को सिखाया। फिर मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते थे क्लासेस के लिए, उनको मैं सिखाते गई, पढ़ाते गई। फिर सबसे पहले कॉल मुझे SNDT से आया, SNDT घाटकोपर से आया था कि मैडम वी वांट टू टेक अ वर्कशॉप। दिस हैपेंड व्हेन, जब भी मैंने ये बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था, दिस वॉज इन 2019, और वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था बिकॉज ऑफ माई सोशल मीडिया। मेरा फेसबुक का जो पेज था जहाँ पे मैंने ये पोस्ट किया था क्लासेस के पिक्चर्स एंड ऑल, माइट बी दे गॉट इंस्पायर्ड बाय दैट, उनको वो अच्छा लगा होगा एंड दे हैड कॉल्ड मी अप। एंड दैट सेशन वॉज फॉर 3 डे। पहला दिन जो था वो आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए था, सेकेंड डे जो था वो ह्यूमन रिसोर्स के लिए था, और थर्ड जो था वो इंटीरियर्स के लिए था। तो मेरे लिए भी बहुत नया था और मैं बहुत सरप्राइज थी कि मैं क्या सिखाने वाली। उस दिन तो मुझे खुद को नहीं पता था, बट व्हेन आई वेंट देम, मैं जब वहां पे गई और द वे आई स्टार्टेड टीचिंग देम एंड द वे आई स्टार्टेड, जो मेरा तरीका था उनको सिखाने का, बोलने का, या फिर जो मुझे नॉलेज था मैंने उनको दिया, तभी मुझे रियलाइज हो गया कि ओके, कि मुझे इतना सब ज्ञान है और मैं आज सच्ची में मैं खुद एक कलाकार बन गई हूँ।
0: क्या बात है।
1: द डे व्हेन आई रियलाइज कि मैं भी खुद एक चित्रकार बन गई हूँ अभी।
0: वाह वाह वाह, बहुत बहुत अभिनंदन। अब देखिए, आपके लिए हमारे कई सारे श्रोता जो है मैसेजेस कर रहे हैं, और न सिर्फ मैसेजेस करते बल्कि अपने अपने सवाल भी पूछ रहे हैं, कुछ आपका अभिनंदन कर रहे हैं। राकेश माथुर जी पुणे से जुड़े हुए हैं, रियासत हुसैन सिद्दीकी उत्तराखंड से मैसेज करते हैं, और इतना ही नहीं, सुदामा नगर खंडवा से हमें मुकेश जगताप जी और रितु जी मैसेज कर रही हैं, आकांक्षा मनोज सिन्हा अहमदाबाद से आपको सुन रही हैं, प्रणव शिंदे जी मुंबई से सुन रहे हैं। वो उनका एक सवाल है आपसे, वो कहते हैं कि कॉर्पोरेट की अच्छी भली नौकरी छोड़ना कौन चाहेगा, है ना, मगर फिर भी आर्ट और क्राफ्ट के क्षेत्र में आपने आने का विचार किया, तो ये कैसे हुआ, और आदिवासियों और विभिन्न एनजीओ के साथ क्या आप मिलकर काम करती हैं?
1: ओके, कॉर्पोरेट सेक्टर, आफ्टर माय 12th स्टैंडर्ड, जैसे कि मैंने बोला कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जो जॉब मैंने ज्वाइन किया, मेरे

0: जो भी जॉब्स थे स्टिल, जब अभी मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया तब तक मेरे सभी जॉब जितने भी हुए सब कॉर्पोरेट ही थे, बहुत अच्छे दर्जे के थे, हाई सैलरी, हाई प्रोफेशन, सब अच्छा था, सैटरडे संडे ऑफ हुआ करता था, बट मेरा मन कभी नहीं उसमें लगा. इसके लिए नहीं लगा क्योंकि मेरा मन हमेशा आर्ट और इसमें ही जुड़ा हुआ था. मैं हर वक्त मुझे यही लगता था कि अरे मुझे कुछ तो आर्ट में करना है, आई वॉन्ट समथिंग टू डू इन आर्ट, मुझे वो क्षेत्र में ही कुछ अपना खुद का निर्माण करना था. तो जब भी मुझे मौका मिलता था, जैसे मैंने बताया, मैं सीखती गई और आई यूज टू ऑलवेज फाइंड द रीजन कि जब कब मुझे ये जॉब छोड़ना मिले, कब मैं मेरे मेरा जो पैशन है उसको फॉलो करने लोगों. ये हमेशा ये रहता है ना कि अपने को रहता है कि जो अपने को अच्छा लगता है वही हमको करना होता है, भले वो कितनी भी बड़ी नौकरी हो, कुछ भी हो. तो वो वैसी चीज हो गई थी कि आई वॉज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि कभी मुझे चांस मिले कि कब मैं जॉब छोड़ू और मेरा पैशन फॉलो करूँ. तो कोरोना ने मुझे वो रीजन दिया, वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया और वर्क फ्रॉम होम करते करते जैसे मैंने मेरे फोटोज पोस्ट किए थे फेसबुक पे, एंड थ्रू दैट अगेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी. मुझे कॉल आया कि कैन यू डू एन एग्जीबिशन फॉर अस, एक एग्जीबिशन होने वाला है, तो वी हैव लाइक योर प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग. एंड दैट वाज द टाइम कि ऐसे हुआ कि वर्क फ्रॉम होम चालू था, मेरे पास थोड़ा टाइम था और फिर मैंने हाँ बोल दिया उनको कि ओके आई एम रेडी फॉर दैट. तो फिर वो प्रोडक्ट्स थोड़े से बनाए ऑफिस से आने के बाद, ऑफिस जैसे ही वर्क फ्रॉम होम एंड अप होता था तो मैंने प्रोडक्ट्स बनाए और 8 ही दिन में मैंने वो एग्जीबिशन के लिए प्रिपरेशन कर दिए. एंड दैट एग्जीबिशन वेंट ऑन बूम. एग्जीबिशन इतने अच्छे लेवल तक गया कि मुझे मंत्रालय से, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल से भी मुझे कॉल आया इंटरव्यू के लिए. एंड दैट इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड. और फिर एक ही मंथ में मैंने मेरा जॉब क्विट कर दिया.
1: क्या बात है. ओके. आपके बारे में और जरूर जानना चाहेंगे, मगर उससे पहले हम चाहते हैं कोई आपका पसंदीदा गीत है जो हम श्रोताओं को सुनाना आप चाहेंगे.
0: पक्का.
1: कौन सा
0: मेरा पसंदीदा गीत? रहे ना रहे हम.
1: अच्छा, क्या बात है, ये तो बहुत ही प्यारा सा गीत है और हम चाहते हैं आपकी इसी फरमाइश के खातिर ये गाना आपको भी सुनाए और हमारे सारे श्रोताओं को भी. बने रहना एफएम रेनबो पर, उल्का जी से बात हो रही है, नमस्ते भारत में कहीं मत जाना. आरजे अमित आपका इंतजार करता रहेगा. अगर आपको आपके कोई सवाल हो तो जरूर 8657661071 पर जल्दी मैसेज कीजिए.

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, म्यूजिकली योर्स.
2: 10:31 हो चुके हैं दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM रेनबो पर आपका मनमित आरजे अमित के संग आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते भारत. और नमस्ते भारत में आज हमारे संग जुड़ी हैं उल्का देवरकर, एक ऐसी कलाकार जो कि अपने चित्रों के जरिए लोगों के जीवन में खुशियों के रंग भरती हैं. उल्का जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, ये आपका चित्रों का दौर आदिवासियों की मदद की ओर कैसे बढ़ा?
3: आदिवासियों की गांव में जब मैं जाती थी, जब भी मैं जस्ट एक ऐसे ही घूमने जाती थी, जैसे मैंने कहा जब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में थी, जब भी छुट्टी हुआ करती थी मैं वहां पे घूमने जाती थी, क्योंकि मुझे नेचर से बहुत प्यार है, मुझे माटी के घरों से बहुत प्यार है. जब भी मेरा घूमना फिरना होता था तब मैं वहां पे जाती थी. और जब भी मैंने वहां पे देखा कि बहुत सारे वारली के कलाकार है, जो कलाकार है उन्होंने अपनी जो कला है वो पूरी बंद कर दी है. बंद क्यों की है? क्योंकि उनके पास वो सोर्स नहीं है. सोर्स क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास कोई ऑर्डर्स नहीं है, मतलब बाहर से जैसे बिक्री के लिए चीजें जानी चाहिए, बिकनी चाहिए, वो बिक नहीं रही थी. इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपनी जो पैशन था, अपनी जो कला थी वो बंद कर रखी थी. तो जब भी मैं जाने लगी वहां पे, तो मुझे ये सब देख के मुझे बहुत मन मेरा दुखी होता था कि अरे इतनी अच्छी कला है, अपनी संस्कृति है, वारली इज महाराष्ट्र फोक आर्ट. तो ये जब भी मैंने देखा तो मैंने सोच के रखा था कि लाइफ में जब भी कभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिले या फिर मुझे वो अगर वो टाइम आए तो मैं इन लोगों के लिए कुछ तो करूंगी. और वो टाइम तुरंत ही आया, कोरोना ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी दी. और वैसे मैंने कारीगर आदिवासियों को फिर अपने पास काम के लिए चालू किया. जैसे मैंने मेरा बिजनेस चालू किया, मैंने उनसे काम करवाना चालू किया. दैट इज हाउ आई स्टार्टेड हेल्पिंग देम.
2: ओके, क्या बात है, वाह, ये बहुत बड़ी बात है. आज प्रणव जी की इस बात को आपने ये जवाब देकर उनको उसका निराकरण किया है. हम चाहते हैं आपसे एक बात और पूछे. जैसे कि देखिए, आप लोगों के लिए काम करती हैं बराबर, बट आपने कारीगर की शुरुआत करी है, इसके पीछे आपका मूल उद्देश्य क्या था?

0: बाय।
1: हेलो,
0: हाँ,
1: क्या आप मुझे सुन पा रही हैं?
0: नहीं, आपका आवाज़ आया नहीं।
1: हाँ, आपने एक कलाकार के रूप में करियर की शुरुआत ज़रूर करी, मगर कारीगर की ओर आपने बढ़ना चाहा, और उसका मूल उद्देश्य क्या रहा?
0: ओके, कारीगर का मेन उद्देश्य यही था कि मुझे जो भी आर्टिशंस है, जो भी कलाकार है, उनको सबको एक साथ लाना था। उनको एक साथ लाके जो भी अभी उनका जो व्यवसाय बोलो या फिर जो उनका जो आर्ट है जो बंद हो गया है, उसको वापस स्टार्टअप करना था
1: जी।
0: और कारीगर ये कोई एनजीओ नहीं है। कारीगर इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप जो मेरे नाम पे है, उल्का देवरुखकर, और मैंने इन कलाकारों को मैंने हायर किया है। कि ये मोटो था कि इनको काम मिले। जो कोई लोग है जो काम नहीं भी कर रहे हैं, बहुत सारी लेडीज लोग हैं जो बहुत कुछ अच्छा कला कर सकती है, क्राफ्टमैनशिप कर सकती है, लेकिन उनके पास सोर्स नहीं है, मटेरियल नहीं है, उनके पास वो गुण है, आर्टिस्टिक ये है, विजन है, बट वो सोर्स नहीं होने की वजह से काम नहीं कर पा रही थी। तो मेरा तभी के लिए मेरा ये एम था कि इन लोगों के मैं लोगों को मैं आगे बढ़ाऊँ और एक अच्छी लेवल तक पहुँचा दूँ।
1: क्या बात है, वाह। इस अच्छे उद्देश्य के संग जब हम जीते हैं ना, तब मुझे एक शेर याद आता है। किसी ने सच ही कहा है कि जो बांट कर खाता है वो कभी भूखा नहीं रहता, और जो छीन कर खाता है उसका कभी पेट नहीं भरता, है ना?
0: ये तो सही तो बात है।
1: ये आपके हाथों के जरिए इतना बेहतरीन काम हो रहा है, बस आपके तारीफ में क्या कहें। चलो, एक गाना हम आपके लिए डेडिकेट कर देते हैं इसी बहाने। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में गाया कि तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, जो कि आपके चित्र के जरिए लोगों के सामने झलकती है।
0: धन्यवाद।
1: बने रहना एफएम रेनबो पर, आपका मनमीत आरजे अमित के संग नमस्ते भारत में। हम बात कर रहे हैं उल्का देवरुखकर से।

0: तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूँ ये कहते हुए हम कई बार कई लोगों के हुस्न की तारीफ में जुट जाते हैं, मगर आज आपकी तारीफ करते हुए मुझे आपसे पूछना है कि कई सारे लोगों के हाथों में बहुत अच्छे चित्र बनाने की ये कला जरूर होती है, मगर नए नए एप्लीकेशंस आए हैं, जंजीज AI की ओर बढ़ रहे हैं, है ना? तो ऐसे जमाने में क्या ये चित्रकला जीवित रह सकती है?
1: ऑफकोर्स रह सकती है, पर चित्रकला एक ऐसी चीज है जो जान डालती है, मीन्स चित्रकला इज आर्ट, आर्ट एक पैशन है और पैशन इज समथिंग विच इज ऑलवेज जो हमेशा जीवित रहती है,
0: राइट?
1: तो अगर अच्छी तरीके से और प्रॉपर तरीके से अगर किया जाए, इस चीज को इस्तेमाल किया जाए या फिर यूज किया जाए, उसका प्रॉपर लर्निंग किया जाए, प्रॉपर वे से किया जाए, तो बट ऑब्वियस है कि दिस हैज अ लॉन्ग लाइफ।
0: ओके, अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दुनिया के सामने अपनी ये कला नहीं ला पाते, किसी विलेज में रह रहे, जैसे कि आपने आदिवासियों की बात करी, बराबर? तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसे गांव में रहने वाले कोई या खेतों में काम करने वाले किसान के अगर बेटे होंगे और वो बहुत अच्छी चित्रकला कर रहे होंगे, तो वो आगे कैसे आ सकते हैं, कुछ गाइड करना कर सकती हैं?
1: अभी अगर देखा जाए तो अपना ओल्ड जमाना जो एंसेस्टर्स का जो था, या फिर मैं अभी जो आदिवासी लोगों के साथ जो काम कर रही हूँ, ये लोग भी तो खेतीबाड़ी में ही काम करते थे, या फिर जो अपने एंसेस्टर्स लोग थे ये भी तो खेतीबाड़ी में काम करते थे, और ये कला जो आई है उनके थ्रू से ही आई है। जैसे अपना की भारत का फोक आर्ट है, ये फोक आर्ट है जो अपने एंसेस्टर ने या पुराने लोगों ने ही बनाया है, जैसे मधुबनी है, वारली पेंटिंग है, ये सब चीजें जो है वो एंसेस्टर्स लोगों से ही आई है, पुराने लोगों से ही आई हुई है।
0: जी जी जी, तो हम चाहेंगे आपसे हस्तकला के बारे में भी जानना चाहेंगे, बस एक गाने के बाद। उससे पहले ये गाना हम सुनाना चाहेंगे, रूप के तेरा, जिसने बनाया फिल्म संजोग से, किशोर कुमार की आवाज में आया। बने रहना नमस्ते भारत इस कार्यक्रम में आपका मनमीत आरजे अमित के संग। गपशप विद आरजे अमित में हम बात कर रहे हैं उल्का देवरुखकर से।

0: कॉसमॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉसमॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉसमॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, म्यूजिकली योर्स।
3: दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उल्का जी से और देखते देखते 10:46 होने आए हैं। मैं हूं आपका मनमीत आरजमीत। आपसे कहना चाहूंगा, ठीक 11 बजे आप समाचार सुनेंगे और समाचार के उस पार ब्रेक फ्री में हमारे अगले आरजे आपसे बात करने आएंगे। हमारे पास महज 15 बचे हैं। हम जानना चाहेंगे उल्का जी, आप किसानों के बच्चों के बारे में वो बात कर रहे थे कि कैसे वो चित्रकार बन सकते हैं।
4: सी एक्चुअली आर्ट इज फ्री फॉर एवरीवन। आर्ट कोई भी कर सकता है, अगर जिसमें पैशन है वो कोई भी कर सकता है। फिर वो किसान का बच्चा हो, वो किसी स्लम एरिया का बच्चा हो, जैसे अभी मैं स्लम एरिया में सिखाने जाती हूँ, कई बच्चे हैं जो खेती में भी काम कर रहे हैं वहाँ पे, कई बच्चे हैं जो माँ बाप के साथ अपने काम पे हेल्प करने जाते हैं, कोई माँ बाप है जो वड़ा पाव का बिजनेस कर रहे हैं, वो बच्चे भी कभी कभी मेरे पास आके सीखते हैं। तो देर इज नो एक लाइन नहीं है कि किसान का बच्चा हो तो वो नहीं सीख पाता है, या फिर आर्ट इज फ्री फॉर एवरीवन। सिर्फ जोश, पैशन होना चाहिए अपने खुद में।
3: ओके, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि आप आदिवासियों से कई सारे प्रोडक्ट्स बनवाते हो, कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं?
4: आदिवासी भी आई इन टू फैब्रिक पेंटिंग, हम लोग कपड़े पे, वस्त्र पे हम लोग पेंटिंग करते हैं।
3: अच्छा, और वो कौन कौन सी होती हैं? वारली और कोई?
4: हाँ, वारली है, देर आर ऑल टाइप ऑफ पोकार्ड्स। प्रीवियसली जब हमने स्टार्ट किया था तब सिर्फ वारली पेंटिंग था, बिकॉज आदिवासी पीपल जो थे वो सिर्फ वारली करते थे। धीरे धीरे इवेंचुअली वी हैव स्टार्टेड विद मधुबानी, वी हैव स्टार्टेड विद बोन आर्ट, वी हैव स्टार्टेड टाई एंड डाई, इससे बहुत सारी कला हमने अभी चालू की है।
3: अच्छा, तो ये भारतीय हस्तकला जो है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि अब 2026 में हम आ गए हैं, मगर क्या भारतीय हस्तकला की कोई खूबसूरती आपको नजर आती है?
4: यस, भारतीय कलाकारी ऐसी है, संस्कृति ही ऐसी है जो इंसान को जीवित रखती है।
3: अच्छा,
4: मेरे लिए तो भारतीय संस्कृति ऐसी है कि वो एक पैशन क्रिएट करती है, इंसान को जीने का वजूद भी देती है कभी कभी, मेरे लिए तो वो है।
3: क्या बात है, वाह वाह। चलिए, इसी बहाने हम एक और गाना सुनाते हैं और अगली और आखिरी लिंक में हम आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे, उससे पहले ये गीत।

0: किसी की आंखों में अगर ऐसे ही आंसू आ जाए तो उल्का देवरुखकर जी वो आंसू पोंछने के लिए आगे बढ़ती हैं। उल्का जी
1: है?
0: जब आप किसी की आंखों के आंसू पोंछती हैं कलाकार के रूप में और उनके जीवन में खुशियां लाती हैं तो आप क्या क्या फील करती है उस वक्त?
1: बहुत बहुत प्राउड फील होता है, यू नो, क्योंकि बीइंग इन अ स्पिरिचुअलिटी, बीइंग अ स्पिरिचुअल कृष्ण भक्त, यू नो, वी हैव ऑलवेज बीन थॉट एंड आई हैव ऑलवेज बीन लर्निंग फ्रॉम भगवद गीता दैट whatever you have got, whatever you have achieved in life, whatever it is, your beauty or whatever the art, especially the art, क्योंकि art हर किसी में नहीं होता है और जिसको मिला है उसको उसको art को संजो के रखना चाहिए, उसको वो बांटना चाहिए। तो जब भी मुझे ये feel होता है कि मेरे passion का, मेरे art का कुछ use हो रहा है, कुछ meaningful उसको reason मिल रहा है, बहुत सारे बच्चे लोग हैं जो art create कर रहे हैं, मेरे photos देख के painting कर रहे हैं, बहुत सारे बड़े लोग हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हैं, 68-67 ईयर्स के लोग हैं जो मेरे पेंटिंग्स करते हैं, और जब भी उनको वो उनका दिन अच्छा जाता है एक पेंटिंग बनाने के वजह से, तो आई फील वेरी ग्लैड कि ठीक है, समवेयर समहाउ मेरा जो एक आर्ट है, मेरा पैशन है, वो कहीं ना कहीं काम आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियली फिट हो रहे हैं या फिर उनको बिजनेस मिल रहा है, उनको कुछ तो काम मिल रहा है, तो ये एक बहुत प्राउड फीलिंग है मेरे लिए।
0: वाह वाह वाह। पारंपरिक कलाओं और कारीगर समुदाय के साथ जब आप काम करती हैं, वो भी अलग अलग है ना, ऐसे अनुभवों ने आपको व्यक्तिगत रूप से बहुत ही अनोखे रूप में बदला होगा, am I right?
1: Right, yes.

0: और ऐसे में जब आप एक म्यूज के रूप में किसी कला की तस्वीर का हिस्सा बन जाती हैं कलाकार के, तो हमारे एक राज नामक श्रोता है, वो पूछना चाहते हैं कि म्यूज होने का आपके नजरिए में अर्थ क्या है?
1: आर्ट हैज चेंज, मेरा लाइफ कम्प्लीटली आर्ट ने चेंज किया. मुझे ऐसा लगता है कि 2021 जब से मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, मेरा ये रीबर्थ हुआ है, मेरा ये सेकेंड बर्थ है. उल्का जो पहले थी और उल्का जो अभी है, ये बहुत अलग है. पहले की उल्का बहुत अलग हुआ करती थी, अभी आर्ट ने उल्का को पूरा संजो के रखा है. जैसे एक फूल का ये बुके होता है ना, जैसे बहुत सारे रंग उसमें भर जाते हैं, वैसे बहुत सारे रंग अभी इसमें भर गए. और बीइंग अ म्यूज होने के वजह से क्या होता है कि मुझे जब भी लोगों के कॉल्स आते हैं, जब भी स्पेशली जब भी लेडीज लोग के कॉल्स आते हैं और जब भी वो बोलती है कि अरे तुझे देख के हमें ये लगता है कि मेरा मुझे मेरा बचपन याद आता है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को तुझ में देखती हूँ, या फिर बहुत सारे कलाकार अभी जो पेंटिंग्स कर रहे हैं बहुत सारी गैलरीज में लगते हैं, बहुत सारे अपकमिंग नए नए आर्टिस्ट है वो जब भी पेंटिंग करते हैं मुझे भेजते हैं, तो एक प्राउड फील होता है कि अरे कहाँ एक मैंने छोटा सा मेरा पैशन चालू किया था, कहाँ एक सिर्फ एक सिंपल साड़ी पहनने वाली लड़की जो सिंपलिसिटी को फॉलो करती है, कुछ भी उसने अलग ऐसे नहीं है, बस सिंपलिसिटी को मैंने एक पकड़ के रखा है. बट आई नो दैट सिंपलिसिटी इज अ वेरी रेयर एंड बहुत वो कीमती चीज है.
0: Yes.
1: तो उसको लेके जब भी लोगों को ये इंस्पिरेशन मिलता है कि इसको हम पेंट करें, और वो पेंटिंग जब भी मैं म्यूजियम्स में देखती हूँ, या फिर जब भी मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं बहुत सारे बड़े लोग, एजेड लोग जब भी, स्पेशली यंग लोग तो ठीक है, एजेड लोग जब भी कॉल करके बताते हैं कि अरे तेरा प्रोफाइल देख के ही हमें बहुत मन भर आता है, या फिर ऐसा प्रोफाइल हमने कहीं देखा ही नहीं है, ये बहुत अलग है आज के जमाने में, आज के जनरेशन में ऐसे प्रोफाइल देखना मिलता ही नहीं है.
0: बहुत
1: मन भर आता है और बहुत अपने आप पे बहुत प्राउड फील होता है.
0: वाह, हमें भी आज आप पे बड़ा गर्व हो रहा है, और हम चाहेंगे कि जेंजीज या जितने यंग जनरेशन आपको सुन रही होंगी, जरूर वो प्रेरित भी होंगे और आपको फॉलो करने का प्रयास करेंगे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अब हमारे जाने का समय हो चुका है, ठीक 11 बजे.
1: धन्यवाद एफएम रेनबो चैनल, थैंक यू सो मच.
0: जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए. हम जाएंगे ठीक 11 बजे, आप हिंदी में समाचार सुनिए, और समाचारों के उस पार आपके लिए अगले ब्रेक फ्री शो में हमारे नेक्स्ट आरजे गंधर्व आपसे जुड़ेंगे. मुझे यानी आरजे अमित को दीजिए इजाजत, और सुनिए यह आखिरी गाना फिल्म हिना से लता मंगेशकर की आवाज में. खुश रहना, मुस्कुराते रहना, और अपने मुस्कान के साथ दूसरों के जीवन में खुशियों के रंग भरते रहना. बाय बाय, स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड टेक केयर.

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में 11:23 हो रहे हैं। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज मौद्रिक नीति समीक्षा की। नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति के निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर रहा है। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक उड़ीसा के भुवनेश्वर में हो रही है। यह बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। मुंबई में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC कल के ब्रिक्स वेव्स बाजार का आयोजन करेगा। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के 500 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक रचनात्मक अर्थव्यवस्था में सहयोग को बढ़ावा देना है। बीड WAF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को 9वीं वरीयता दी जाएगी। चैंपियनशिप में भारत की 5 स्पर्धाओं में 2-2 खिलाड़ी भाग लेंगे। इसी के साथ आज के समाचार यही समाप्त होते हैं।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे गंधर्व और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1, दिल से दिल तक। और अब वक्त है ब्रेक फ्री का, लेकिन आज का ब्रेक फ्री थोड़ा अलग है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कुछ कहानियां, थोड़ी अजीब, थोड़ी डरावनी और शायद कुछ कहानियां ऐसी भी जो आपका डर ही भगा दें। लेकिन इन कहानियों में सिर्फ भूत नहीं होंगे, कहानी एक डर होगा, कहानी एक राज और कहानी एक ऐसी आवाज जिससे हम सब कभी ना कभी भागे हैं। और हां, अभी तो दिन का उजाला है, लेकिन देखना, कहानी शुरू होने के बाद शायद आप एक पल के लिए सोचेंगे, अगर ये मेरे साथ हो गया तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का ब्रेक फ्री हम सुनेंगे कुछ कहानियां जो डराएंगे भी और शायद कुछ सिखाएंगे भी। चलिए शुरू करते हैं।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
2: हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे गंधर्वा, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1 दिल से दिल तक। मैंने आपको कहा आज आप सुनेंगे डरावनी कहानियां जो आपको डराएंगी भी और कुछ सिखाएंगी भी। चलिए पहली कहानी सुनते हैं। मुंबई के एक पुराने होटल में रूम नंबर 13 को सालों से लॉक रखा गया था। कहते थे जो भी उस रूम में रात गुजारता सुबह वो बदला हुआ मिलता था। एक रात आरव ने डर डर के वो रूम बुक कर लिया। रात के एग्जैक्टली 2:13 बज रहे थे पर उसके फोन पर एक मैसेज आया, आईने में बिल्कुल भी मत देखना। आरव हंसा और ऑब्वियसली आईने की तरफ वो मुड़ गया। आईने में उसका रिफ्लेक्शन नहीं था, उसकी जगह एक लड़का खड़ा था जो बिल्कुल उसके जैसा दिख रहा था। आईने वाला आरव धीरे से बोला, तुम मुझसे कब तक भागोगे? आरव डर गया, उसने पूछा, तुम कौन हो? रिफ्लेक्शन ने कहा, तुम्हारा वो वर्जन जो तुम बनना चाहते थे, तुम्हारे भी सपने थे जो आज नहीं है। उसने मिरर पर हाथ रखा, तुमने मुझे यहां लॉक किया है अपने डर के साथ। आरव को समझ आ गया रूम डरावना नहीं था, डरावना तो उसका डर था। उसने आईना ही तोड़ दिया और पहली बार अपनी जिंदगी में खुद के डर से ही रूबरू हुआ और शीशे ने उसे उसी का चेहरा सौंप दिया, जैसे कह रहा हूं तुम जो भी हो यही हो, अपने सपनों के पीछे भागो, अपने सपनों को हासिल करो।

0: बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
2: जय अब गरीबों की जय बन गई है।

रात के 12:27 पर चर्चगेट से आखिरी लोकल ट्रेन निकली। डिब्बे में सिर्फ एक लड़की बैठी थी, मीरा। अगला स्टेशन आया, दरवाजे खुले लेकिन कोई चढ़ा नहीं। तभी अचानक ट्रेन में अनाउंसमेंट हुई, अगला स्टेशन आपका आखिरी फैसला। मीरा ने सोचा शायद ट्रेन का स्पीकर खराब है, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी हर स्टेशन पर उसकी जिंदगी का एक दृश्य दिखाई देने लगा। एक स्टेशन पर उसकी असफल ऑडिशन की याद थी, दूसरे स्टेशन पर उसका टूटा हुआ रिश्ता, और एक स्टेशन पर उसके पिता की वही बात, तुमसे नहीं होगा। हर स्टेशन पर ट्रेन के स्पीकर से एक ही सवाल आता, वापस जाना है। मेरा चुप रही। आखिरकार ट्रेन एक बिल्कुल सुनसान और अंधेरे प्लेटफॉर्म पर जाकर रुकी। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने मीरा से कहा, बेटा ये ट्रेन तुम्हें कहीं ले जाने नहीं आई है, ये तो तुम्हें कुछ पीछे छोड़ने के लिए यहां लाई है। मीरा ने पूछा, क्या? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, अपना डर। दरवाजे खुले, मीरा प्लेटफॉर्म पर उतर गई, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा वहां कोई ट्रेन ही नहीं थी।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे गंधर्वा। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1, दिल से दिल तक। आज मैं आपको ऐसी कहानियां सुना रहा हूं जो आपको डराएंगी भी और सिखाएंगी भी। चलो अगली कहानी सुनते हैं। नैना को अपनी नानी के घर एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में पूरा परिवार डाइनिंग टेबल के पास बैठा था, लेकिन एक अजीब बात थी, हर तस्वीर में एक एक्स्ट्रा कुर्सी थी और उस कुर्सी पर एक काली सी परछाई बैठी हुई थी। नैना ने नानी से पूछा, नानी ये है कौन? नानी ने बस इतना कहा, उसके बारे में बात मत करना। उस रात नैना ने वो तस्वीर दोबारा देखी, लेकिन इस बार परछाई कुर्सी पर नहीं थी, वो नैना के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। नैना ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक तस्वीर में एक वाक्य उभर आया, मैं तुम हूं। नैना को अपने बचपन की बातें याद आने लगी। लोगों की तरह व्यवहार मत करो, ज्यादा मत बोलो, रिस्क मत लो, अपनी मर्जी से मत जियो। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। नैना ने तस्वीर उठाई और उसे जला डाला। तस्वीर के साथ वो परछाई भी गायब हो गई। कभी कभी जिस भूत से हम सबसे ज्यादा डरते हैं वो कोई और नहीं होता, वो हमारे अंदर छुपा हुआ वही रूप होता है जिसे हमने दुनिया के डर से दबा दिया है। तो दोस्तों, डर से मत डर, कुछ अलग कर। तेरी हर कमजोरी पे ये डर घर बनाएगा, पर तू अपना हुनर दिखाएगा। उसी कमजोरी को तू अपनी ताकत बनाएगा और उस दिन ये डर तुझसे भाग जाएगा।

0: ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

कबीर को हर रात 3:17 पर एक फोन कॉल आता था। नंबर हमेशा अननोन होता था। पहली रात उसने कॉल कट कर दिया। दूसरी रात फोन उठाया तो दूसरी तरफ उसकी खुद की आवाज थी, कल ऑफिस मत जाना। कबीर डर गया। अगली रात आवाज ने कहा, उस लड़की को प्रपोज मत करना, फिर जॉब मत छोड़ना, शहर मत बदलना। हर रात वो आवाज उसे एक डिसीजन लेने से रोक देती थी। कबीर ने नोटिस किया, जब भी वो आवाज सुनता उसकी लाइफ और छोटी हो जाती है। एक रात फोन आया, आवाज बोली, आज घर से बाहर मत निकलना। कबीर ने पहली बार फोन काट दिया, दरवाजा खोला और बाहर चला गया। उस मोमेंट उससे समझ आ गया, वो आवाज भूत की नहीं थी, वो उसके अंदर का डर था। और डर की सबसे डरावनी पावर तब खत्म हो जाती है जब हम उसकी बात मानना बंद कर देते हैं।

ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

कार्यवाही सहित कई मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई। भारतीय रिजर्व बैंक चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का अनुमान मामूली बढ़ाकर 6.7% कर दिया। वही खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान भी मामूली घटाकर 5% कर दिया है। हॉर्मूज जलडमरू मध्य फिर से खोलने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच जारी बातचीत में प्रगति की घोषणा के बाद तेल की कीमतें 3 सप्ताह के निचले स्तर पर आ गईं। इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान कम होने की संभावना बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट कच्चा तेल लगभग 5% गिरकर $80 प्रति बैरल से नीचे आ गया। दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में ईशरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वलीशेट्टी ने प्रवेश किया। ईशरानी बरुआ ने क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की ली सो ही को हराया, जबकि तन्वी ने चीन की आन क्यू आन को मात दी। श्रियांशी ने ताइपी की युपो पाई को हराया। इसी तरह ये प्रमुख समाचार यही समाप्त होते हैं।

हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1 दिल से दिल तक। मैं हूं आरजे गंधर्व, आपका दोस्त, आज का आपका होस्ट। बचपन में हम सब कितने जिज्ञासु होते थे ना, ये क्या है, वो कैसे होता है, आसमान नीला क्यों है, हर चीज को जानने का एक अलग ही उत्साह होता था। फिर धीरे धीरे बड़े हो गए और जवाब याद करने लगे, सवाल पूछना ही भूल गए। लेकिन ग्रोथ का असली राज सिर्फ नॉलेज में नहीं, जिज्ञासा में होता है। जो लोग सवाल पूछते रहते हैं वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। जिज्ञासा ही क्रिएटिविटी को जन्म देती है। नई संभावनाएं भी वही लोग देख पाते हैं जो एक्सप्लोर करते हैं। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, आखिरी बार आपने किस चीज को सच में जानने की कोशिश की थी। जिज्ञासु रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि सवालों से ही नए रास्ते निकलते हैं। और इसी सोच के साथ सुनते हैं म्यूजिक कैफे सेगमेंट का ये पहला गाना।

0: सस्ते के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल 0 हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल

लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें पीएम सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

हेलो दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है आजकल हम एक वीडियो पूरा देख नहीं पाते, एक आर्टिकल पूरा पढ़ नहीं पाते और कभी कभी तो एक विचार भी ज्यादा देर तक टिका नहीं पाते। अटेंशन स्पैन आज के युवाओं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। नोटिफिकेशन, रील्स और लगातार स्क्रोलिंग, हर पल कुछ ना कुछ हमारा ध्यान खींच रहा है। लेकिन आज के दौर की असली सुपर पावर नॉलेज नहीं, फोकस है। जो इंसान

गहराई से ध्यान लगा सकता है, वही कुछ बड़ा और अर्थपूर्ण बना सकता है। तो कभी कभी फोन को थोड़ा दूर रखना भी जरूरी है, अपने विचारों के साथ थोड़ा समय बिताना भी जरूरी है, क्योंकि जब ध्यान मजबूत होता है तो सपने भी साफ दिखाई देने लगते हैं। तो स्क्रोलिंग से थोड़ा ब्रेक लीजिए और अब अपना पूरा ध्यान लगाइए इस अगले शानदार गाने पर।

हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे थे अटेंशन स्पैन की। और दोस्तों, अटेंशन बना रहेगा तो म्यूजिक का मजा भी बना रहेगा। तो अब बारी है हमारे हिट एंड हॉट सेगमेंट की। हिट एंड हॉट सेगमेंट अब ठीक 1 बजे शुरू होने वाला है। आपका फेवरेट सेगमेंट हिट एंड हॉट। आप हमें ऐसे गाने सजेस्ट कीजिए जिन्हें सुनते ही आपके पैर थिरकने लगते हैं, जोश आ जाता है और बस मन करता है चलो डांस फ्लोर पे जाएं। ऐसे गाने जो आप बर्थडे पार्टी में, शादी में या किसी भी सेलिब्रेशन या फंक्शन में सुनना पसंद करते हैं। तो आपका वो डांस वाला फेवरेट सॉन्ग कौन सा है हमें बताइए FM रेनबो 107.1 के व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर है 8657661071। फिर से सुनिए, व्हाट्सएप नंबर है 8657661071। आपकी चॉइस हो सकती है हमारा अगला हिट एंड हॉट। और 12:30 बजे एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है, प्रोग्राम उमंग। तो आप वो प्रोग्राम 12:30 बजे सुनिएगा। उससे पहले सुनते हैं ये शानदार गीत।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। उमंग कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर विचार भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर, रतनमाला सुरेलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरेलकर जी ने। लिखते हैं,
2: बदलना है अगर कल को तो आज को बदलना सीखो, किस्मत की राह न देखो, खुद आगे बढ़ना सीखो।
1: बहुत सुंदर और प्रेरणादायी विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ श्रोताओं, परिवर्तन आज को बदलने से ही आता है, क्योंकि कल कभी नहीं आता
2: जी।
1: आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी का।
2: नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी। स्वामी विवेकानंद जी पर केंद्रित कार्यक्रम उमंग सुना एवं पसंद आया, कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है।
2: आपने आगे लिखा है, कार्यक्रम इस तरह से प्रस्तुत किया गया जैसे स्वामी विवेकानंद जी साक्षात हमारी आंखों के सामने हैं एवं मन लगाकर हम इनका प्रवचन सुन रहे हैं। शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: और राजा जी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: गुजरात गांधी ग्राउंड से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
1: तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम के साथ। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज की चर्चा में।
2: श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस दोस्त की जो हर समय हमारे साथ रहता है। जरा सोचिए कौन है वो जो इस आधुनिक युग में हमेशा लगभग हम सबके साथ रहता है, कोई रहे न रहे और उसके बिना अब रहा ही नहीं जाता।
1: विमलेश जी, मुझे लगता है आप बात कर रही हैं मोबाइल फोन की।
2: बिल्कुल सही कहा जी जी। अब तो लोग क्या विद्यार्थी भी मोबाइल के बिना ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे मछली पानी के बिना।
1: जी बहुत हद तक आपका कहना बिल्कुल ठीक है। विमलेश जी, सच्चाई तो ये है कि कुछ तो रात को भी मोबाइल देखते देखते सोते हैं और सुबह भी मोबाइल देखकर ही उठते हैं।
2: लेकिन अजीत जी, सच्चाई तो ये भी है कि अब मोबाइल के बिना काम भी नहीं चल सकता।
1: जी वो तो है,
2: हम किसी न किसी प्रकार से उस पर आश्रित हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हमें एक बात अच्छी तरह से समझना होगा कि मोबाइल तो मात्र एक साधन है
2: जी।
1: महत्वपूर्ण ये है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसका सही उपयोग हमें आगे ले जाएगा और गलत उपयोग बिल्कुल पीछे
2: जी।
1: लेकिन प्रश्न है कि मोबाइल का सही उपयोग करें तो कैसे करें।
2: जी अजीत जी, चलिए मान लीजिए परीक्षा एक महीने बाद है, विद्यार्थी मोबाइल उठाता है पढ़ने के लिए, वो पढ़ाई के लिए गंभीर भी है, मोबाइल में परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन कक्षा चल रही है कि तभी एक नोटिफिकेशन आया, नई रील देखिए। अब बताइए जी जी क्या होगा।
1: फिर एक और रील या स्टोरी और आ जाएगी।
2: बिल्कुल, या सोशल मीडिया पर और कई संदेश आ जाएंगे, पता चला कि उसकी फोटो को बहुत से लाइक्स मिल गए हैं
1: और एक मैसेज ये भी आ गया कि आपकी फोटो तो साहब बिल्कुल कमाल कर रही है, कुछ और फोटो डालिए। अब क्या होगा हम समझ सकते हैं।
2: देखते देखते एक घंटा क्या कई घंटे गायब हो गए
1: और शायद पूरा दिन पानी में गया। तो अब सवाल ये है विमलेश जी कि क्या किया जाए।
2: देखिए, यही वो समय है जब पढ़ने वाले को संयम और दृढ़ संकल्प की जरूरत पड़ती है। एक नियम बनाना होगा, पढ़ाई के समय सोशल मीडिया बंद
1: और नोटिफिकेशन भी बंद।
2: बिल्कुल, नहीं तो हर 5 मिनट में मोबाइल बोलेगा।
1: क्या बोलेगा?
2: मुझे भी देख लो।
1: लेकिन सवाल ये है कि यदि मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ तो विमलेश जी इंटरनेट तो ऑन है, ऐसे में सोशल मीडिया भी तो चलता रहेगा।
2: नहीं अजीत जी, आप मोबाइल छोड़े बिना इसे नियंत्रित भी कर सकते हैं, इसका भी उपाय है।
1: वो कैसे?
2: हर मोबाइल की सेटिंग में DND या डू नॉट डिस्टर्ब या फोकस मोड का विकल्प होता है, इस विकल्प को चालू कर दें, वहाँ आप अपनी इच्छा से फोन या सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन खोल या बंद कर सकते हैं। इससे इंटरनेट चालू रहेगा और आप पढ़ाई बिना बाधा के कर पाएंगे।
1: जी मित्रों, आप अलग से भी सोशल मीडिया के एप्स को उनकी सेटिंग में जाकर म्यूट कर सकते हैं
2: जी।
1: आप एक काम और कर सकते हैं कि सारे एप्स के आइकन मुख्य स्क्रीन से हटाकर दूसरी स्क्रीन पर डाल दें, ताकि यदि संदेश आए भी तो आपको दिखाई ना पड़े।
2: तो श्रोता मित्रों, हम कहना चाहेंगे कि मोबाइल से

0: मनोरंजन जरूर कीजिए, लेकिन इससे अधिक मोबाइल को सीखने का साथी बनाइए। और याद रखिए,
1: मोबाइल पढ़ाई का साधन बने, समय बर्बाद करने का नहीं।
0: पढ़ते समय, परिवार के साथ समय बिताते समय नोटिफिकेशन अवश्य बंद रखें।
1: रोज मोबाइल के उपयोग का समय तय करें और रात में देर तक मोबाइल न चलाएं और इंटरनेट का सुरक्षित और जिम्मेदारी से उपयोग करें।
0: मत भूलिए, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं।
1: क्या बात है, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं। जिसने मोबाइल को नियंत्रित कर लिया,
0: समझिए उसने अपने भविष्य को भी नियंत्रित कर लिया।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, मिलेंगे फिर एक
0: नई जानकारी के साथ।
1: श्रोताओं, आज हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आपको एक काम करना है।
0: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर एक या दो पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको करना क्या है।
1: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर एक या दो पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। और भेज दीजिए अपना स्लोगन हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CITNCRT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: यूट्यूब में जाइए, टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के कई विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
0: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है परीक्षा।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कहानी पर आधारित है, जिसे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। कहानी के द्वारा ईमानदारी, परिश्रम, कर्तव्य निर्वहन और कार्यनिष्ठा के मूल्यों पर प्रकाश डाला गया है।
2: परीक्षा। बात उन दिनों की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। उन दिनों देश में बहुत सारी रियासतें हुआ करती थीं। रियासतें यानी छोटे छोटे राज्य जो अंग्रेजों की अधीनता तो मानते थे लेकिन स्वतंत्र थे। ऐसी ही एक रियासत थी देवगढ़। राजस्थान की देवगढ़ रियासत बहुत ही मनोरम स्थान में बसी हुई थी। रियासत की जनता बहुत प्रसन्न थी। रियासत की खुशहाली के पीछे सबसे बड़ा योगदान था वहां के दीवान यानी मुख्य प्रशासक सरदार सुजान सिंह का। वे दयालु, नीति कुशल और बहुत अच्छे प्रशासक थे, लेकिन अब वे बूढ़े हो चले थे। एक दिन की बात है।
3: महाराज की जय हो। दीवान श्रीमत सरदार सुजान सिंह जी आपसे मिलना चाहते हैं।
4: मिलना चाहते हैं इस समय? उन्हें आदर सहित कक्ष में ले आओ।
3: जी महाराज।
5: महाराज
4: आइए आइए दीवान साहब, बैठिए बैठिए। जी कहिए।
5: राजन, पिछले 40 वर्षों से आपके दास ने इस रियासत की सेवा की है। अब विचारा है कि इस सेवा से अवकाश ग्रहण करूं।
4: दीवान साहब।
5: महाराज,
4: हम आपका अनुरोध स्वीकार तब करेंगे जब आप हमारी एक शर्त मानेंगे।
5: आज्ञा दीजिए महाराज। कैसी शर्त?
4: शर्त यह है कि अवकाश ग्रहण करने से पहले आपको राज्य के लिए एक ऐसा दीवान ढूंढ कर देना होगा जो आपकी तरह सुयोग्य हो।
5: जी महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा।
2: दूसरे ही दिन देश के सभी प्रसिद्ध समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर विज्ञापन छपा कि देवगढ़ रियासत के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। इस विज्ञापन का वही असर हुआ जो जंगल में आग का होता है। सैकड़ों लोग

0: लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए देश के अलग अलग प्रांतों से देवगढ़ चल पड़े। आइए अब आपका परिचय कराएं कुछ उम्मीदवारों से। आप हैं श्रीमान अ। आप सोकर उठते थे सवेरे 10 बजे, लेकिन जब से यहाँ आए हैं बेचारे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और बगीचे में टहलते हुए सूर्य देवता के दर्शन करते हैं। और आप हैं श्रीमान ब, स और ज। इनकी तो पूछिए मत, अपने घर में इन्होंने नौकरों की नाक में दम कर रखा था। ये वहाँ अशिष्टता के जीते जागते उदाहरण थे, लेकिन यहाँ तो ये बेचारे नौकरों को भी संबोधित करते समय आप, श्रीमन, महामना, मान्यवर और जनाब जैसे संबोधनों और उपाधियों का उपयोग किए बिना बात ही नहीं करते। और इनसे मिलिए, आप हैं श्रीमान क। आप फैशन के मारे हैं, लेकिन यहाँ सादगी की प्रतिमूर्ति बने घूम रहे हैं। अक्सर राजमहल के पुस्तकालय में आप बड़े बड़े ग्रंथों को उलटते पलटते देखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर पाखंडोत्सव चल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी अयोग्य हैं। उन्हें क्या पता था कि कुशल और अनुभवी दीवान सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रही हैं और अनुभवी कान सब कुछ सुन रहे हैं। समय समय पर उम्मीदवारों को समूह वाद विवाद के लिए भी बुलाया जाता था। एक दिन की बात है, सभी उम्मीदवारों को लगा कि विद्वता तो दिखा ही रहे हैं, क्यों ना शारीरिक क्षमता भी दिखाई जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि आज हॉकी खेली जाएगी।
1: ये मैंने दिया पास। अरे दौड़ो दौड़ो और तेज दौड़ो।
2: वो तो गेंद लिए खुद ही दौड़ा चला जा रहा, उसे पास देना चाहिए।
3: लगता है खुद ही गोल करके मानेगा। भी छीनता हूँ गेंद उससे।
0: सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें कहीं दूर से इस मैच को भी देख रही थीं। खेल खत्म हुआ, सभी खिलाड़ी थके हुए थे, शाम होने वाली थी। अब सबने फैसला किया कि राजमहल लौटा जाए। मैदान से थोड़ी ही दूरी पर एक नाला था जिस पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को नाले में से चलकर आना होता था। खिलाड़ी लोग उसी नाले के पास बैठे सुस्ता रहे थे।
4: आज खेल में बड़ा मजा,
5: बहुत मजा आ गया। क्या गोल मारा था भाई, मजा आ गया उसमें तो।
6: हाँ, गोल हो गया। किसी का
0: दिल खुश हो गया। तभी एक किसान अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। नाले में कीचड़ था और चढ़ाई ऊंची थी, उसकी गाड़ी वहीं फंस गई।
7: कहां फंस गई?
8: ए, इधर क्या देख रहे हो?
9: साहब, गाड़ी फंस गई है, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो।
10: अच्छा, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो बड़े आए।
8: चलो साथियों, देर हो रही है, दीवान साहब समय का भी बहुत ध्यान रखते हैं।
11: चलो चलो चलो
9: भाई निकलो। लेकिन
10: अरे छोड़ो इन्हें, चलो।
0: लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा था जो वहीं रुक गया। आज हॉकी के खेल में उसे चोट भी लग गई थी और वह लंगड़ा रहा था। वह दृढ़ निश्चय के साथ किसान की ओर बढ़ा और बोला,
12: बाबा तुम गाड़ी में बैठकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, बस थोड़ी देर में गाड़ी बाहर निकल जाएगी।
9: हाँ, ठीक है,
12: कोशिश करते
9: हैं।
0: और हुआ भी यही, युवक ने पूरा जोर लगाया, किसान ने बैलों को साधा और थोड़ी ही देर में गाड़ी नाले के पार थी।
9: हाँ बेटा, अच्छा किया तुमने।
12: जी बाबा।
9: हुजूर, मुझे रात भर यहीं रुकना पड़ता।
12: तो क्या इनाम देते हो?
9: ना

0: रावण ने चाहा तो दीवानी आपको ही मिलेगी।
1: और आखिर वो दिन आ ही गया। सबके दिल जोर से धड़क रहे थे, पता नहीं किसके भाग्य में राजयोग है। राज दरबार सजाया गया।
2: पूरा एक महीना हो गया है, आज फैसला।
3: तुम्हें क्या लगता है महाराज आ रहे हैं?
2: अरे अरे,
3: सुजान सिंह जी भी आ गए।
1: महाराज सिंहासन पर आसीन हुए। रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा,
0: मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा सुयोग्य पुरुष मिल गया है। मैं पंडित जानकी नाथ सा को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। जब आप हॉकी खेल रहे थे, आप लोगों को ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो व्यक्ति जख्मी होने पर भी एक गरीब किसान की गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसमें धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता सभी गुण हैं। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा।
2: सही बात है।
0: उसका संकल्प दृढ़ है। वो स्वयं चाहे धोखा खा जाए,
2: बिल्कुल सही कहा,
0: लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य कर्म से कभी भी पीछे न हटेगा।
1: सभी सरदार सुजान सिंह के चुनाव की प्रशंसा कर रहे थे।
2: अच्छा इंसान, हमेशा सही काम करेगा।
1: भले देवगढ़ रियासत के नए दीवान पंडित जानकी नाथ सा को बधाई दे रहे थे।
4: बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो पंडित जी, बहुत खूब चुनाव किया।
5: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
1: सबकी समझ में आ गया था कि धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता जैसे सद्गुण ही व्यक्ति के सच्चे आभूषण होते हैं।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम परीक्षा, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मित्र की सहायता।
7: सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो समय पर काम आए और हर परिस्थिति में वो आपके साथ खड़ा रहे।
8: एक जंगल था। उस जंगल में एक ऊंचा पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा रहता था। कौवा बहुत दयालु था। वो सभी पक्षियों की सहायता करता था। जब दूसरे पक्षी दाना चुगने बाहर जाते थे तो कौवा उनके बच्चों की देखभाल करता था। वो पक्षियों के बच्चों को गीत सुनाता था।

0: एक दिन कौवे को भूख लगी। वो खाने की खोज में निकला। उसने उड़ते हुए देखा कि एक शिकारी आ रहा है। शिकारी के कंधे पर जाल रखा हुआ था। वो जंगल की ओर ही आ रहा था। कौवे ने शिकारी को देखकर सोचा,
1: ये शिकारी

0: aš jie kočių pakšniukų pakalkarą medžiagą. Šikarysi pakšniukį rakšakarnį čiai.
1: उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, किंतु फिर भी पक्षियों को बचाने के लिए वो वापस लौट आया। जंगल में पहुंचते ही कौवे ने काव काव कर सब पक्षियों को इकट्ठा किया और बोला,
0: सुनो भाइयों, सुनो, एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा, मार मार कर खाएगा। सुनो भाइयों, सुनो।
1: सब पक्षियों ने कौवे की बात मान ली। अब कौवा बहुत थक गया था, उसे भूख भी लग रही थी, वो खाने की खोज में जाने लगा। तभी उसने कुछ कबूतरों को देखा। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
0: भाइयों, आप कहां से आए हैं? मैंने आपको पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा।
2: मैं कबूतरों का मुखिया हूं। हम सब पास के जंगल से आए हैं और दाना चुगने जा रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा, लेकिन सुनो भाइयों, सुनो, एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा, मार मार खाएगा। सुनो भाइयों, सुनो, सुनो भाइयों, सुनो।
2: कौवे भाई, हम उसके जाल में नहीं फंस सकते, हम उसके जाल पर बैठेंगे ही नहीं।
0: मुखिया जी, वो शिकारी बहुत चालाक है, वो चावल के दाने डालकर जाल लगाएगा।
2: कौवे भाई, हम सब तुम्हारी बात समझ गए हैं, तुम हमारी चिंता न करो।
1: मुखिया कबूतर की बात सुनकर कौवे की चिंता दूर हुई और अब वो खाने की खोज में उड़ गया। थोड़ी देर में जब वो वापस आया तो उसने देखा जंगल में एक स्थान पर सारे कबूतर जाल में फंसे हुए हैं। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
0: अरे मैं तो तुम सबको बता गया था, फिर भी तुम सब इस जाल में कैसे फंस गए?
2: एक जगह चावल के दाने बिखरे देखकर हमें लोभ हुआ, हम चावल खाने नीचे उतरे तो इस जाल में फंस गए।
0: ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा देखो, शिकारी आ ही रहा।

0: सब साहस से काम लो। साहस और एकता से बड़ी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। तुम सब मिलकर इस चाल को लेकर उड़ सकते हो।
1: हाँ, ठीक कहते हो कौवे भाई, ठीक कहते हो, ऐसा ही करेंगे।
2: कबूतरों ने ऐसा ही किया, सब मिलकर उस जाल को लेकर उड़ चले। कौवा भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगा। कौवा चूहे के पास पहुंचा और बोला,
0: चूहे भाई,
3: क्या
0: तुम्हारा मित्र कबूतर एक शिकारी के जाल में फंस गया है।
3: कहाँ है मेरा मित्र? मुझे अभी उसके पास ले चलो।
0: चूहे भाई, वो देखो, वहाँ सामने वो एक जाल में फंसा हुआ है। उसके साथी कबूतर भी जाल में फंसे हुए हैं।
3: तो चलो कौवे भाई, उनके पास चलें। मैं अभी उनके जाल को काट देता हूँ।
0: हाँ हाँ, चलो
3: चलो चलो कौवे भाई,
0: चलो
3: चलो,
0: चलो, चलो, चलो।
2: चूहा और कौवा जल्दी से उस जाल के पास पहुँचे।
1: चूहे भाई, जल्दी से इस जाल को काट कर हमें मुक्त करो। शिकारी हमें ढूंढता हुआ यहाँ आ सकता है।
3: तुम चिंता मत करो मित्र, मैं अभी जाल काट कर तुम्हें मुक्त कर देता हूँ।
1: ठीक है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी।
2: थोड़ी देर में चूहे ने जाल काट दिया, सब कबूतर मुक्त हो गए। मुखिया ने चूहे और कौवे का धन्यवाद किया। फिर सब कबूतर उड़कर अपने जंगल की ओर चल दिए। चूहा अपने बिल में चला गया। कौवा भी अपने पेड़ की ओर उड़ गया। वो आज बहुत खुश था, क्योंकि आज उसने देखा था कि मिलजुल कर काम करने में कितनी शक्ति है।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम मित्र की सहायता, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे गंधर्व। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1, दिल से दिल तक। स्वागत है आपका हिट एंड हॉट सेगमेंट में। आज हम ऐसे गाने प्ले करने वाले हैं जो गाने सुनकर आपके पैर थिरकने लगते हैं, जो गाने आपको नाचने में मजबूर कर देते हैं। चलिए सुनते हैं पहला गाना।

बहुत ही बेहतरीन फरमाइश, ये फरमाइश की थी आकांक्षा मनोज सिन्हा जी ने अहमदाबाद से। वो कहती हैं, डांस इज माय फेवरेट वे टू स्माइल। क्या बात है, चलिए अगला गाना सुनते हैं।

क्या बात है। इस गाने की फरमाइश की थी विजेंद्र घटोल जी ने। चलिए अगला गाना सुनते हैं।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे गंधर्वा। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1। हिट एंड हॉट सेगमेंट शुरू है। अगर आपको भी आपके पसंदीदा गाने बजवाने हैं मुझसे, तो मुझे इस नंबर पे अपने गाने भेजिए। नंबर है 8657661071। इस गाने की फरमाइश की थी संजय दर्शन जी ने, बहुत ही बेहतरीन फरमाइश। चलिए अगला गाना सुनते हैं।

क्या बात है। कुछ गाने हम सुनते हैं, कुछ गाने हम महसूस करते हैं, और कुछ गाने सुनते ही हमारे पैर थिरकने लगते हैं। इस गाने की फरमाइश की थी राकेश माथुर जी ने पुणे से। चलिए अगला गाना सुनते हैं।

ये खूबसूरत फरमाइश की थी अजय साखरे जी ने इंदौर से, चुरा के दिल मेरा, फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। और इसी के साथ हमारा म्यूजिकल सफ़र ख़त्म होने जा रहा है दोस्तों, जल्दी वापस मुलाकात होगी। अब हिट एंड हॉट सेगमेंट का आखिरी गाना सुनते हैं और ठीक 2 बजे आप मिड डे न्यूज़ सुनेंगे।

0: Assembly. Chief Minister C. Joseph Vijay's government has set a target of becoming $1.5 trillion economy by 2031. Relief and restoration work has intensified across the flood-affected districts of Odisha as water levels continue to recede. We have more from a correspondent.
1: The state government says cooked food, dry rations, safe drinking water, medicines and other essential supplies are being distributed, while efforts are underway to restore roads, electricity and drinking water facilities. However, people in several flood-hit areas have alleged that relief has not yet reached them despite extensive damage. Meanwhile, 5 more sluice gates of the Hirakud Dam have been closed, reducing flood water discharge to just 8 gates. The India Meteorological Department has forecast another spell of widespread rainfall across Odisha till the 10th of this month. An orange warning has been issued for Mayurbhanj, while yellow warning remain in force for 13 districts for today. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: The India Meteorological Department IMD has issued a red warning for extremely heavy rainfall of Assam and Meghalaya today. The IMD has also issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall conditions over Arunachal Pradesh, Bihar, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, Odisha, Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim, Uttar Pradesh and Uttarakhand for the day. Meanwhile, Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh are expected to witness heavy rainfall for the next 2 days. In Korea Masters Badminton Tournament, 3 Indian shuttlers, Isharani Barua, Tanvi Sharma and Sriyanshi Valishetty have entered the second round of the women's singles of the Korea Open in Asan. Isharani Barua defeated South Korea's Lee So-hee in the round of 32, while Tanvi defeated An Ki-won of China. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says people's lives in Jammu and Kashmir and Ladakh transformed after abrogation of Article 370. RBI projects the GDP growth at 6.7%. This financial year says economic growth continues to be supported by resilient demand. Proceedings of both houses of parliament continue to witness disruption over several issues. Supreme Court says authorities must exercise restraint while responding to young protesters. Students protest against alleged irregularities in the JPSC and JSSC examinations intensifies in Ranchi. Red warning issued for extremely heavy rainfall of Assam and Meghalaya. And in badminton, 3 Indian shuttlers enter the second round of the women's singles of the Korea Open in Assam. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान, कहा मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज, असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और भारत की इशरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वेलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पिछले 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण

0: महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है।
1: आज ही के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हुई है और अब शासन राजनीतिक परिवारों के बजाय जनता द्वारा संचालित है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
2: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड। आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी बट नोबडी हैड द विल टू एब्रोगेट इट।
0: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। सड़क, रेल और अन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है, संपर्क व्यवस्था बेहतर हुई है, सरकारी सेवाएं मजबूत हुई हैं और पर्यटन, निवेश तथा सुरक्षा की स्थिति में भी सुधार आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं।
3: अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास हुआ है। नई सुरंगें और सड़कों के चौड़ीकरण से जुड़ी परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसमें चिनाब और अंजीखड रेल पुल शामिल है, के पूरा होने से कश्मीर घाटी तक रेल संपर्क सुनिश्चित हुआ है। जेड मोड टनल ने सोनमर्ग तक हर मौसम में पहुँच सुनिश्चित की है, जबकि जोजिला सुरंग का काम पूरा होने वाला है और ये नैतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर मौसम में पहुंच प्रदान करेगी। वर्ष 2024 में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2,35,00,000 से अधिक रही, जिसमें 65,000 से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 18,000 करोड़ का निवेश हुआ है। 2,200 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं और 26 नए औद्योगिक ढांचे विकसित किए गए हैं। 41,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और लगभग 9,81,000 स्वरोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। इन वर्षों में सुरक्षा की स्थिति में भी काफी सुधार देखने को मिला है। श्रीनगर से इशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है।
4: After a detailed assessment of the evolving
3: परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के विस्तार से समीक्षा करने के बाद मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 5.25 पर ही बरकरार रखने का निर्णय लिया है।
0: रेपो दर वो ब्याज दर है जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत मांग के कारण देश में आर्थिक वृद्धि बनी हुई है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि हाल में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि रही।
4: हेडलाइन इन्फ्लेशन हैज एज्ड अप।
3: उम्मीद के मुताबिक मुद्रास्फीति आधार से थोड़ी ऊपर चली गई है, हालांकि पहले तिमाही में वास्तविक महंगाई दर अनुमान से थोड़ी कम रही। इससे पता चलता है कि लागत का दबाव कीमतों पर पूरी तरह से नहीं पड़ा है। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह ईंधन और खाद्य वस्तुएं हैं। अब तक कीमतों के दबाव के हर तरफ फैलने के कोई खास संकेत नहीं मिले हैं। कीमती धातुओं को छोड़कर महंगाई दर पहले के अनुमान के मुताबिक ही नियंत्रण में है।
4: As projected earlier.
0: उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में बेहतर आर्थिक प्रदर्शन को देखते हुए RBI ने वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि

0: का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है।
1: रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर दिस ईयर,
2: मौजूदा वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी का अनुमान अब 6.7% है। ये हमारे पिछले अनुमानों से 10 आधार अंक अधिक है। पहली तिमाही में 7%, दूसरी तिमाही में 6.4%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.8%।
0: श्री मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: सदन की कार्यवाही फिलहाल अभी जारी है। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की योजना की घोषणा की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विद्यार्थियों ने संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है।
4: राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। छात्रों का कहना है कि उन्हें किसी का इस्तीफा नहीं बल्कि संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द कर राज्य के बाहर से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों से न्यायिक जाँच चाहिए। छात्रों ने सीआईडी जाँच को नाकाफी बताया है। छात्रों के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद सीआईडी की कार्रवाई और तेज हो गई है। सीआईडी ने इस मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की हिंसक प्रतिक्रिया से स्थिति और बिगड़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा, जिसमें पत्थरबाजी के आरोप भी शामिल है, के लिए पार्टी की कथित जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पारित कर दिया है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक सदन में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उत्तरी कर्नाटक के यादगीर जिले के कडीचूर बडियाल औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह रासायनिक रिसाव के कारण 3 श्रमिकों के दम घुटने से मौत हो गई। रिसाव के संपर्क में आए 2 श्रमिकों को रायचूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में तीसरे ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू हो गई है। अनेक देशों के प्रतिनिधि 4 दिन के इस विचार विमर्श में भाग लेने के लिए भोपाल पहुंचे हैं।

0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 107 अंक गिरकर 78,322 पर और निफ्टी 94 अंक फिसलकर 24,521 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और लद्दाख में अगले दो दिन तक तेज बारिश की आशंका है। ओडिशा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस बार मॉनसून में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है।
1: उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित जिलों में बड़ी नदियों का जलस्तर घटने के साथ ही राहत और बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हीराकुद बांध के 5 और स्लुइस गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे बाढ़ का पानी छोड़ने वालों गेटों की संख्या घटकर 8 रह गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि आज 13 जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। उड़ीसा में मौजूदा मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 26% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और खेलों में भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रौनक चौहान, सानिध दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज खेलेंगे। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान मिले 300 चुनिंदा उपहारों की आज से ऑनलाइन नीलामी शुरू कर दी है। ये नीलामी ई उपहार पोर्टल पर की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं न्यूज ऑन एआईआर ऐप और आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल को 107.1 एफएम रेनबो पर, और आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी 107.1 एफएम रेनबो को सुन सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है वो लोग जो आपकी दिए हुए समय से पहले उस जगह पहुंच चुके होते हैं, वो लोग जो आपसे चेक करते रहते हैं कि आप कहां तक पहुंचे हैं और आपको बिना बताए वो वहां पहुंच जाते हैं, तो आपसे पहले पहुंचकर आपको हल्का सा सरप्राइज भी दे देते हैं वो लोग। बताए आपको भाई, ऐसा मुमकिन है कि आपको ऐसा इंसान ओवर स्मार्ट या शक्की लगे, है ना, स्पेशली अगर आप रिश्ते में हैं। अगर नई दोस्ती है तो आपको लग सकता है कि भाई ये प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं, और खास करके अगर आपकी कलीग है। पर क्या आप जानते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है, पर ऐसा ना होने के भी चांसेस अच्छे खासे हैं। भाई अब बता देती हूँ कि क्या पॉइंट है। तो पॉइंट ऐसा है कि ये कंट्रोलिंग बिहेवियर ना होकर प्यार में समर्पण, लगन या निष्ठा, यानी डेडिकेशन, डिवोशन भी तो हो सकता है ना। तो भाई असल बात क्या है, जानने के लिए बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो और लव यू जिंदगी। आप सभी के लिए लेकर आई हूं मैं वैशाली, और हमेशा ये जो मेरा मंत्र होता है वो है लव लाइफ एंड लाइफ लव यू बैक, कहता है लव यू जिंदगी।

लव यू जिंदगी चल रहा है 107.1 FM रेनबो पर, और बातें बहुत ही कमाल की होती रहती है 107.1 FM रेनबो पर, ये आप सभी जानते हैं। और देखिए आज जो है जिंदगी क्यों इतनी खुशनुमा है, या किस तरह उसको बेहतरीन बना सकते हैं और खूबसूरत बना सकते हैं अपनी सोच को ठीक करके, थोड़ा सा साइकोलॉजी के बारे में जानकर, तो इसी पर बातें हो रही है। क्योंकि लव यू जिंदगी कहता है लव लाइफ एंड लाइफ लव यू बैक। तो दोस्तों साइकोलॉजी की माने तो हर जगह 10 मिनट पहले पहुंचने वाले ये दोस्त कोई खड़ूस या जरूरत से ज्यादा उतावले नहीं होते। असल में ये अपने दिल में बचपन का एक ऐसा कोना छुपाए बैठे होते हैं जहां कभी किसी के लेट आने से इन्हें बहुत बुरा लगा था। उन्होंने तभी से मान लिया कि समय पर आना सामने वाले को ये बताने का सबसे

प्यारा तरीका है कि भाई तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो. तो आजकल बोलते हैं ना ब्रा बोलते हैं, ब्रो बोलते हैं, तो जो भी आप बोलते हो, लेकिन हम तो भाई भाई बोलेंगे. तो भाई तुम मेरे लिए तो बहुत स्पेशल हो. इसलिए जब वो रेस्टोरेंट की टेबल पर पहले से आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो वो अपनी टेंशन नहीं बल्कि आपके लिए अपना पक्का वाला प्यार, दोस्ती, याराना दिखा रहे होते हैं, तो शक करने से पहले, हाँ, और उटपटांग सोचने से पहले ये भी सोच लो भाई कि ये केयरिंग का भी हिस्सा हो सकता है. हर एक इंसान का अपना प्यार, अपना केयर दिखाने का तरीका अलग होता है ना. तो चलिए बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स.

आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी 107.1 एफएम रेनबो पर। बातें हो रही है दोस्तों उन लोगों की जो आपको शायद ऐसा लग सकता है कि कंट्रोलिंग है, शकी है, पता नहीं खुद को क्या

बात समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो केयरिंग हो, ऐसा हो सकता है कि शायद उनके बचपन के कुछ अनुभव ऐसे रहे हैं जिसमें केयर दिखाने का, प्यार दिखाने का तरीका एक रहा कि समय पर पहुंचना, सामने वाले से पहले पहुंचकर वहां के इंतजाम चेक कर लेना, सारी चीजें समझ लेना, जान लेना और आपके लिए पहले ही से सेटिंग ऐसा कर रखना जहां पर आप कंफर्टेबल हो, वो आपके साथ कंफर्टेबल हो। तो ऐसे कोई तजुर्बे भी होते हैं लोगों के साथ। तो जब कोई नया रिश्ता हो, दोस्ती नहीं हो, तो जज करने से पहले थोड़ा सा ठहर कर उनकी साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। यानी बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी वाली चीज नहीं बोल रही हूं मैं, बस इतना ही कि भाई कोई कुछ कर रहा है तो उसके पीछे का मकसद क्या है। अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा सा देखो, ऑब्जर्व करो, इंतजार करो, तो आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आपको एक और गाना सुनवा रही हूँ, यारी पर, दोस्ती पर। और भाई किस तरह भाई हम सभी अपने दोस्तों पर, और उससे भी ज्यादा बड़ी बात, दोस्ती के एहसास पर कुर्बान है। वो कुछ गाने यूं बयां करते हैं कि क्या कहूं। अभी कुछ दिन पहले हमने मनाया है फ्रेंडशिप डे, तो चलिए दोस्तों के नाम ये गाना सुनते रहे, बने रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई 51.1 FM रेनबो, लव यू जिंदगी चल रहा है और बातें चल रही हैं हमारे उन दोस्तों के बारे में, हमारे उन बहुत ही नियर एंड डियर वंस के बारे में जो हमें लग सकता है कि कंट्रोलिंग है भाई, कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, लेकिन इसके रीजंस कई सारे हो सकते हैं। इसकी वजह जो है आपको उनके बचपन में मिल सकती है। अब देखिए, कुछ लोग बिल्कुल ही बाय नेचर कंट्रोलिंग हो सकते हैं, पंक्चुअल हो सकते हैं, यानी कि एक अनुशासन में जो लोग पले बड़े होते हैं ना, वो भी ऐसे हो सकते हैं, लेकिन कई सारे केसेस में अगर बाकी सारी चीज़ें सही हैं, आपको समझ में आ रही है, तो ऐसा हो सकता है कि वो जो इंसान है ना, उनका अनुभव बचपन का बड़े होते समय ऐसा रहा जिस वजह से वो जो हैं वैसे हैं। हाँ, देखिए दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो आदतें हम बचपन में अनजाने में सीख जाते हैं वो बड़े होने तक हमारे दिल से चिपक जाते हैं। मान लीजिए बचपन में कोई प्यारा सा बच्चा स्कूल से बाहर रहा खड़ा, अपने पेरेंट्स का रोते रोते इंतजार कर रहा है, या स्कूल के अंदर भी, तो वो लेट है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो उतना बड़ा भी नहीं है, दूसरे हैं जो उसको संभाले हुए हैं, लेकिन वो उनको ट्रस्ट नहीं करता। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि जब हमेशा कोई ना कोई घर से आ ही जाता है उसे लेने, तो आज कोई क्यों नहीं पहुंचा, तो वो डर उसके दिमाग में बैठ जाता है। अब बड़े होकर जब वो किसी काम से डिनर पर भी 20 मिनट पहले पहुंचकर चुपचाप गाड़ी में बैठ जाते हैं, तो वो कोई सनक नहीं होती, वो बस अपने प्यार से और जो उन्हें आता है ना, उस तरीके से ये पक्का कर रहे होते हैं वो लोग कि जो अकेलापन उन्होंने झेला, या अचानक एक दिन जब वो इंतजार कर रहे थे और उनके अपने नहीं पहुंचे, वो आपको कभी ना झेलना पड़े। तो खासकर जहाँ पर प्यार या बहुत ही करीबी रिश्ते की बात आती है ना, वहाँ पर उन्हें हमेशा ये बात सताई जाती है, सताती रहती है कि अरे जिस तरह वो एक दिन अचानक मेरे लिए कोई नहीं था, वो उसे ना महसूस हो कि भाई मैं नहीं आई। और खास करके तब होता है जब रिश्ता नया है, दोस्ती नहीं है, एक बार पहचान हो जाए, वो ट्रस्ट जो है ना वो आ जाए, एक दूसरे पर विश्वास हो, सब पता, तब ऐसा नहीं लगता। लेकिन जब रिश्ता नया होता है, दोस्ती नहीं होती है, चीजें कच्ची होती है, नाजुक होती है, उस समय इन चीजों से फर्क पड़ता है और वो ये बात जानते हैं, है ना। बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी 107.1 एफएम रेनबो पर। मैं हूं वैशाली और बातें हम कर रहे हैं जिंदगी के उस पहलू की, जब दोस्ती नई होती है, रिश्ते नए होते हैं और धागे जो हमारे बीच होते हैं ना, ये कच्चे होते हैं। कभी कोई कंट्रोलिंग लग सकता है, बहुत ही ज्यादा रिजिड लग सकता है, लेकिन शायद अंदर उनके दिल में प्यार हो, केयरिंग हो, इसके बारे में भी सोचना जरूरी है ना दोस्तों। अब कई बार लोग इन्हें, यानी ऐसे लोगों को, अरे यार तुम कितने बोरिंग हो या कितने रिजिड हो कहकर सुनाने लगते हैं, पर सच तो ये है कि उनके इस रूखे दिखने वाले बर्ताव के पीछे एक सॉफ्ट और मासूम दिल होता तो है। ये वो लोग हैं जिन्हें पता है कि जब कोई अपना हमें भूल जाता है या बहुत देर कर आता है तो दिल में कितनी जोर से कसक उठती है। वो नहीं चाहते कि आप कभी भी उस बुरे एहसास से गुजरे, इसलिए इसे शक या कंट्रोलिंग बिहेवियर मत समझिए। ये तो प्लानिंग है और घड़ी की सुइयों से लिखी उनकी अपनी एक अनोखी लव लैंग्वेज हो सकती है। फिर हाँ, ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट या अनुशासित परिवार में

ले बढ़े हो या कोई वाकई कंट्रोलिंग नेचर का हो सकता है, पर हमें सोच समझकर डिसाइड करना चाहिए कि बात क्या है। दोस्तों और बातें करेंगे, और भी बातें बाकी है, और आप सभी गाने एंजॉय कर रहे हैं इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और आप सभी के मैसेजेस जो गुड इवनिंग वाले हैं, हाय हेलो जी वाले, वो मुझे मिल चुके हैं। मैं देख रही हूँ मैसेजेस, मुझे यहाँ पर जो है अशोक पाटिल जी का वर्ली से मैसेज आया है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं ये प्रोग्राम को, धन्यवाद। फिर मुझे मैसेज आया अजय साखरे जी का इंदौर से, ये गानों का प्लेलिस्ट बहुत एंजॉय कर रहे हैं। रजनीकांत रघुनाथ पाटिल जी वाड़वन से हमारे साथ बने हुए हैं। संजय दर्शन जी भी यहाँ पर जो है हमारे साथ मौजूद है। पंकज मोहन जी का भी हमें मैसेज आया हुआ है, प्रकाश शिंदे जी का आया है। प्रकाश शिंदे जी बहुत एंजॉय कर रहे हैं शो को। और पंकज मोहर जी अमरावती से हमें लिखते हैं कि वैशाली मैडम जी दोस्त पर लव यू जिंदगी कार्यक्रम बढ़िया लग रहा है, अगर दोस्त समय से पहले आकर हमारे लिए समय देते हैं तो वो दोस्त जीवन में खास होते हैं, ऐसे दोस्त जीवन में होने चाहिए और हमारे लिए हमें समय दे, केयर करे, और ऐसे दोस्त मिलना वाकई किस्मत होती है। तो आप किस्मत वाले हैं अगर आपको ऐसे दोस्त मिले हैं तो। वैदेही भी सॉन्ग्स प्लेलिस्ट बहुत एंजॉय कर रही है और बोलती है कि भाई चौपी वैशाली आपकी वो होती ना चिड़िया करती है चू चू, वो बहुत पसंद कर रही है। तो बोलती है उसी तरह जब बात करें मुझे मजा आ रहा है। क्या बात है वैदेही, थैंक यू। मुझे भी मजा आया कि इतने टाइम बाद आपसे जुड़ रही हूँ मैं शाम के समय। दीपा पालकर भी हमें मैसेज करती है और कई सारे इन्होंने बातें लिख भेजी है और लिखती है, हर शख्स का प्यार दिखाने का तरीका अलग होता है। कोई लोग पीठ पर जोर से थपथपा कर पूछते हैं कि क्या बात है, ठीक हो ना, तो कोई अपना प्यार मीठा मीठे से हंस कर व्यक्त करते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी भी। और कुमुदनी ढोबले जी का भी हमें मैसेज आया है, बस ये नमस्ते फूल और अपना प्यार भेजती है। वीरेंद्र घाटोल जी अकोला से हमें मैसेज करते हैं, गानों का प्लेलिस्ट उनको बहुत ही सुंदर लगा और बातें कहानियां ये सारी चीजें बहुत खूबसूरत लगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं देख रही हूँ और कोई श्रोता हैं जो हमसे जुड़े हैं तो उनका नाम कहीं मिस ना हो गया हो, और बाकी तो मुझे पता है आप सभी हम तुमका इंतजार करते ही हैं बेसब्री से आपके मनपसंद गाने जो प्ले होते हैं। तो चलिए मैं आपसे फिर से बहुत जल्द जुड़ूंगी एक दो गानों के उस पार, बने रहे सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

107.1 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी लव लाइफ एंड लाइफ लव यू बैक कहता है लव यू जिंदगी। और जिंदगी के कई सारे खूबसूरत पहलू होते हैं, बस वो के वो और वही चीजें नहीं होती हैं, बट बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर हम वाकई डूब कर सोचे तो हमें पता चलेगा कि सच में बहुत खूबसूरत है जिंदगी। हम जितना सोच रहे थे, जितना अंडर एस्टिमेट

कर रहे थे, चीजें उतनी बुरी तो नहीं है, है ना? तो वही बातें हम कर रहे थे दोस्तों के बारे में, उन रिश्तों के बारे में जो नए होते हैं, जब हम श्योर नहीं होते और तब हमको लगता है कि क्या ये इंसान कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम डीपली सोचें तो ऐसा होता है कि उनके कोई ऐसे तजुर्बे होते हैं, उनकी परवरिश ऐसे किसी माहौल में हुई होती है जिसकी वजह से उनको लगता है कि वक्त से पहले पहुंचना, आपके लिए सारी चीज़ों की इंतज़ाम कर रखना, तैयारियां कर रखना, ये केयरिंग और प्यार का हिस्सा है। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जब बच्चे होते हैं ना, तो उनकी माँ या माता पिता में कोई प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, किसी चीज़ की वजह से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। कभी होता है ये है कि उनकी माँ या मान लीजिए नानी माँ दादी माँ उनके साथ रहती हैं, वो बहुत बीमार चल रही हो और इसलिए उन्हें ये आदत हो गई हो कि समय पर सारी चीज़ें करके रखें, अपनी जिम्मेदारियाँ सही समय पर निभाएं, अपनी माँ के लिए दादी या नानी माँ के लिए सारी व्यवस्थाएँ पहले ही से करके रखें, उनके पहुँचने से ही पहले सारे इंतजाम हो जाए। अब ये पहलू भी तो हो सकता है, लेकिन हम अक्सर पहले नेगेटिव चीजों के बारे में ही सोचते हैं और बाद में सोचते हैं कि हाँ भाई बात तो सही है, लेकिन फिर भी हम शक करते हैं, है ना? वैसे फ्रेंड्स, ऐसे दोस्तों के साथ रहने का एक मजेदार फायदा भी है, आपको कभी भी किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपके पहुंचने से पहले ही आपके लिए बेस्ट सीट बुक कर चुके होते हैं और मेन्यू देखकर ये भी सोच चुके होते हैं कि आपको क्या पसंद आएगा, देखकर ये भी सोच लेते हैं सारी चीजें कि भाई माहौल कैसा है। हाँ, बेचारे इस चक्कर में खुद थोड़ा थक जरूर जाते हैं, लेकिन आपके चेहरे की एक प्यारी सी मुस्कान उनकी सारी थकान पल भर में गायब कर देती है। तो अगली बार जब आपका वो दोस्त आपको समय से पहले वहां खड़ा मिले, तो गुस्सा होने के बजाय उसे कसकर एक जादू की झप्पी दीजिएगा और सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम रेनबो और आप हमें न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन रहे हैं। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। दीवानगी हो तो शायरों जैसी वरना ना हो, मोहब्बत अगर सर चढ़कर ना बोले तो ये कैसी मोहब्बत प्यारों। दोस्तों की महफिल में शेरो शायरी ना हो तो वो कैसी महफिल मित्रों। चलिए समा बांधेंगे, क्षमा जलाएंगे, अपने दिलों को रोशन करेंगे, कुछ जज्बात से और कुछ अंदाज से शायर ना सही शेर बन जाएंगे। ऐसी खूबसूरत महफिल हम सजाएंगे अंदाजे बयां में 107.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो पर।

6:05 से 6:15 तक आप सुनेंगे नागपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार। बने रहें 107.1 MHz FM रेनबो पर।

आप सभी का अंदाजे बयां में स्वागत है 107.1 FM रेनबो पर। आप सुन रहे हैं आका

आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर और आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी। दोस्तों, दीवानगी जैसे मैंने कहा हो तो शायरों जैसी हो वरना ना हो, क्योंकि पता है आपको कि दीवानगी के सही मायने क्या है आपको तब तक नहीं समझ में आएंगे जब तक आप डूब कर चूर होकर मोहब्बत नहीं करते। और अगर मोहब्बत सर चढ़कर ना बोले तो ये कैसी मोहब्बत है यारो मेरे प्यारो, ये मैंने कहा था। और उसकी वजह यही है कि मोहब्बत को अगर जानना हो तो अगर वो सर चढ़कर ना बोले तो कैसी पहचान उस एहसास से। और भाई, दोस्तों की महफिल बिना शेर व शायरी के हमेशा अधूरी होती है। दिल के जज्बातों को शायरी से बेहतर कौन सी बातें हैं, कविताओं से अच्छी कौन से तरीके हैं जो बयां कर सके। तो भाई, ऐसे खूबसूरत बातें, खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले गानों के साथ कहाँ मिलेंगे आपको भाई। अगर वो कोई प्रोग्राम होगा तो बस यकीनन अंदाज़े बया होगा 107.1 FM रेनबो पर। दोस्तों, एक शायर गुलाम मुस्तफा, इन्होंने लिखा है, देखे हैं हमने बहुत हंगामे मोहब्बत के, देखे हैं हमने बहुत हंगामे मोहब्बत के, आगाज भी रुसवाई अंजाम भी रुसवाई, आगाज भी रुसवाई अंजाम भी रुसवाई, देखे हैं हमने बहुत हंगामे मोहब्बत के। वाह क्या बात है कि भाई, देखिए एक बात तो है कि मोहब्बत हो और हंगामा ना हो ये तो मुमकिन नहीं। तो भाई, शुरुआत में भी जो रुसवाई है यानी कि बदनामी होती ही है और अंजाम तक पहुंचते पहुंचते भी भाई मोहब्बत में रुसवाई तो होती ही है। मोहब्बत में होना अपने आप में एक हंगामा कर देने बराबर है, क्या सोचते हैं आप। मैं तो भाई मानती हूँ इस बात को और इत्तफाक रखती हूँ शायर से। आप सभी बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स। मैं हूँ वैशाली और आप सभी के साथ बनी रहूंगी रात के 8 बजे तक।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर

अंदाजे बयां चल रहा है 107.1 FM रेनबो पर, जहां हो प्यार वहां गलत फहमियां भी होती है, जहां हो प्यार वहां गलत फहमियां भी होती हैं। सो बात बात पे दिल यूं बुरा नहीं करते, सो बात बात पे दिल यूं बुरा नहीं करते, ये कहते हैं शायर अमजद। हाँ दोस्तों, वाकई जहां प्यार होता है वहां गलत फहमियां कई सारी होती है, और इसलिए ये जानकर ये मानकर आगे चलना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि गलत फहमियों की वजह से बात बात पर मन खट्टा नहीं करते, नाराज नहीं होते, है ना। वरना जिंदगी तो भाई ऐसा जो है रूठने मनाने में ही तो बीत जाएगी फिर। और भाई प्यार और मोहब्बत इतनी पेचीदा चीज है, जितनी साधारण या सीधी लगती है उतनी काश होती, और अगर होती तो क्या हमें मजा आता, नहीं ना। किसी भी चीज में तब मजा आता है जब चैलेंज जबरदस्त हो, जब बहुत मुश्किल हो, कठिनाइयां बहुत ज्यादा हो। और इसीलिए एक शायर तो कह चुके हैं ना कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बस यूं ही है मोहब्बत कि अगर भाई आपको आसानी से मिल जाए तो वो आसानी से आगे बढ़ेगी, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। बने रहें, सुनते रहें, आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स। और भाई मैं कोशिश कर रही हूँ ये देखने की कि आपको अब कौन सा गाना सुनवाया जाए। एक से बढ़कर एक ऐसे गाने हैं दिल को छू लेने वाले कि भाई अक्सर इस कश्मकश में रहती हूँ मैं कि कौन सा गाना है जो आपके दिलों के तार को छेड़ देगा। और भाई ये एक गाना मुझे लगता है ये यकीनन जो है हर एक के दिल के तार कुछ अलग ही गजबी तरीके से छेड़ता है।

0: जब सजते हैं सुरीले सांस तो खिल जाती है मन की कली,
1: यही डूबे दिल मेरे।
0: जगमगाता है ये दिल का शहर और धड़कनों की धुन पर थिरकते हैं अनजाने ख्वाब कई।
1: हाले दिल को सुकून चाहिए।
0: चल पड़ा है कारवां इन साजों का इस कदर, निखरने लगे हैं जिंदगी के रंग कई।
1: रंग दे तुम्हें गेरुआ।
0: आओ रूबरू हो जाए हम इस हसीन दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 107.1 FM रेनबो पर, दिल से दिल तक।

मोहब्बत ही में मिलते हैं शिकायत के मज़े पैहम, मोहब्बत ही में मिलते हैं शिकायत के मज़े पैहम, मोहब्बत जितनी बढ़ती है शिकायत होती जाती है। शायर कवि लिरिसिस्ट शकील बदायूनी साहब लिखते हैं, मोहब्बत ही में मिलते हैं शिकायत के मज़े पैहम, यानी कंटिन्यूसली हमेशा लगातार, मोहब्बत जितनी बढ़ती है शिकायत होती जाती है। क्या बात कही कहूँ या भाई, हर प्यार करने वाले के दिल की बात है कही ये कहूँ। वही मज़े बहुत आते हैं मोहब्बत में शिकायत करने के, ऐसे कहते हैं शकील साहब, क्योंकि मोहब्बत जितनी बढ़ती है शिकायतें उतनी होती जाती है। सोचिए, हम सभी कहते हैं कि भाई प्यार है, मोहब्बत है, इतना जानते हैं एक दूसरे को, क्या ये सारी बातें, क्या कंप्लेन करना, क्या शिकायतें, लेकिन

देखिए, इनका भी मानना ये है कि मोहब्बत जितनी बढ़ती जाती है उसमें कंप्लेंट्स या शिकायतें उतनी ज़्यादा होती है। आपको क्या लगता है? और मज़े भी आते हैं यानी कि शिकायत करने का, क्योंकि वो इंसान जो होता है ना, आपके हक का होता है, आपका अपना होता है, हर तरह से सर से पांव तक बस आपको लगता है ये मेरा ही है। तो चाहे जितनी ही दुनिया भर की शिकायतें हो, मज़ा भी आता है, अच्छा भी लगता है, वो जो अटेंशन मिलता है ना, और जो रूठने के बाद वो जो हमें मनाते हैं उसमें जो मज़ा है भाई, फिर तो लाजमी है कि शिकायत करने में मज़ा तो आएगा ही और आता ही रहेगा। शायद ही किसी को बचपना लगे, लेकिन मुझे लगता है यही तो बात है, यही तो मोहब्बत है, यही तो प्यार है। वरना भाई ये शिकायत ना करे तो कैसे एहसास हो कि सामने वाला जो है वो हमारा है और उसका भी दिल हमारे ही लिए धड़क रहा है। चलिए, छेड़खानी का ये सिलसिला इस गाने के साथ जारी रखते हुए आप सभी बने रहें 107.1 FM रेनबो पर, म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे हैं अंदाजे बयां 107.1 FM रेनबो पर। और बस एक आखिरी गाना आप सभी के लिए प्ले होगा, जिसके बाद ठीक 7:07 से तक आप सुन सकेंगे न्यूज स्टूडियो से प्रादेशिक समाचार। बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो और आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और FM पर और साथ ही साथ FM रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज की डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। तो भाई शुरू हो चुका है हम तुम और ये वो समय होता है जिसका आप सभी हमारे प्यारे श्रोताओं को बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है क्योंकि लिसनर्स रिक्वेस्ट आर है, आपके भेजे हुए फरमाइश जो है हम प्ले करते हैं, आपकी बातें साझा करते हैं साथ ही साथ और जो

श्रोता नए हैं और हमसे अभी अभी जुड़े हैं, हमारे नंबर्स नहीं पता, उन्हें बताना चाहती हूँ कि व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए हमारा नंबर है 8657661071 और हमें कॉल करने के लिए, बातचीत के लिए नंबर है 4515-4132 4515-4133। तो हम तो मैं आपकी फरमाइशें मुझ तक पहुंच चुकी है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किस तरह आपके अपने आकाशवाणी एफएम रेनबो मुंबई के साथ जुड़े रहना है, बने रहना है। तो भाई आप सभी के मैसेजेस है बहुत खूबसूरत। यहाँ पर मुझे संजय दर्शन जी का मैसेज आया है और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत शायरी भेजी है यहाँ पर, और ये लिखते हैं, आज अंदाजे बयां जो है उसमें बहुत मज़ा आया और कुछ दिल के एहसास है। लिखते हैं, शिकायत भी उसी से होती है जिससे मोहब्बत बेहद हो, वरना गैरों के गलत होने पर भी हम सिर्फ मुस्करा कर छोड़ देते हैं। और लिखते हैं, गैरों से कैसी शिकायत करना, वो तो बस तमाशा देखते हैं, दर्द तो तब होता है जब अपने ही अपनों की बात नहीं समझते हैं। वाह क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय जी। और हमें मैसेज करके हमारे साथ बने हुए हैं आनंदी जाधव जी सातारा से, श्रीधरन जी मुंबई से, डॉक्टर अंजू जो हैं ये अंधेरी ईस्ट से जुड़ी हुई हैं, बाबा दादर से बने हुए हैं, और ओमकार प्रधान, मेरे ख्याल से मैं सही पढ़ रही हूँ नाम, ये हमारे साथ बने हुए हैं, और साथ ही कुमुदिनी विठल ढोबले ये भी बनी हुई है, रजनीकांत पाटिल जी वार्ड वन से बने हुए हैं। और हमें मैसेज आया है दीपा पालकर जी का, अयास चौधरी जी का हमें कॉल आया, प्रकाश शिंदे जी का भी कॉल आया है, पंकज मोहड़ जी ने भी कॉल किया, और मैसेजेस में फिरोज सिगनपुरिया और अशोक पाटिल जी वर्ली से ये हमें मैसेज करते हैं। तो ये जो है हमारे श्रोताओं का सबसे जो पहला लिस्ट मैं बता रही हूँ कि जिन्होंने कॉल किया है, ताकि आप बिल्कुल ये रखें, विश्वास रखें कि आपके गाने प्ले होने वाले हैं। तो भाई आगे बढ़ते हुए मैं ये कहूँगी कि दीपा पालकर जी ने कई सारी बातें भेजी हैं और आप सभी की फरमाइश है, साथ ही साथ आज एक्ट्रेस काजल का जन्मदिन है, तो हमारे तमाम श्रोताओं की तरफ से और टीम एफएम रेनबो मुंबई की तरफ से एक्ट्रेस काजल को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि आज का हम तुम जो है काजल जी के गानों से भरा होगा, और आप सभी के मैसेजेस मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप सभी जानते हैं इतने सारे मैसेजेस होते हैं कि यहाँ पर बैठा हुआ आरजे भी नहीं समझ पाता कि पहले क्या करें और फिर आगे क्या करें। आप सभी के प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। और यहाँ पर मैं दीपा पालकर जी का मैसेज पढ़ रही हूँ, ये लिखती है, हर शख्स का प्यार दिखाने का तरीका अलग होता है। हाँ, ये इन्होंने बताया था और मैं आप सभी के साथ साझा कर चुकी हूँ, साथ ही साथ उन्होंने गाने भेजे हैं। और यहाँ पर डॉक्टर अंजू भी हलो ही लिख रही थी, मैं आगे देख रही हूँ और हमारे कौन से श्रोता मित्रों के मैसेजेस हैं। पंकज मोहड़ जी हमें बहुत सारी बातें लिख भेजते हैं, इन्होंने लिखा है, जहाँ प्यार हो वहाँ गलत फहमी भी होती है, ये बात उनको बहुत ही गजब लगी। और इन्होंने भी लिखा है कि ये सुनना चाहते हैं कुछ गाने। अब इन्होंने भी काजल जी को जो है जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है, और जेनिलिया डिसूजा जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं ये लिखते हैं, और बेताब के गाने की भी फरमाइश इन्होंने की है। तो मैं बिल्कुल देखूंगी कि क्या क्या फरमाइशें इन्होंने भेजी है, उसमें से एक गाना बिल्कुल प्ले करूंगी। प्रकाश शिंदे जी हमें लिखते हैं, लव यू जिंदगी शो की बातें और खूबसूरत नगमों को इन्जॉय कर रहे थे, और बहुत सारी बातें लिखते हैं काजल जी के बारे में। हैप्पी बर्थडे के साथ एक मैसेज भी इन्होंने लिखा है कि आपके अभिनय की सादगी और अदाकारी सबसे जुदा है, आपकी हर एक चुलबुली मुस्कान पर ये दिल फदा है, जन्मदिन के इस खास मौके पर बस यही दुआ है हमारी, सलामत रहे हमेशा आपकी ये खूबसूरत दुनिया सारी, जन्मदिन मुबारक हो काजल जी, ऐसे लिखते हैं। और आगे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है, बहुत प्यारी चीज़ें लिखी है, एक एक करके मैं आप सभी के साथ साझा करूँगी। और दीपा जी की जो सारी फरमाइशें हैं उसमें से एक गाना बिल्कुल प्ले करूँगी, और क्योंकि एक्ट्रेस काजल ने फिल्म बेखुदी से अपने करियर की शुरुआत की थी, तो सबसे पहले बेखुदी का ये गाना और उसके बाद दीपा जी की जो फरमाइश है उसमें मैं चांद सिफारिश प्ले करने वाली हूँ। तो आप सभी बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो। हम तुम चल रहा है और आप सभी की फरमाइश है, यहाँ पर जो है बिल्कुल मुंबई की बारिश की तरह बरस पड़ी है और बहुत बहुत खुशी है इस बात की कि आपका प्यार हमारे साथ बना हुआ है। और

देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज एक्ट्रेस काजल का जन्मदिन है। काजोल कहते हैं कुछ लोग, लोग काजल कहते हैं। जो भी हो, ये शख्सियत ऐसी है जो बड़ी ही कमाल की है। उनकी हंसी ऐसी है कि बस जो आपके दिल को छूती नहीं है, चीर कर आपके दिमाग तक पहुंच कर वहां पर घर कर जाती है। ऐसे दमदार आवाज की धनी है एक्ट्रेस काजोल, और इनकी हंसी, इनका चुलबुलापन, ये सारी तमाम बातों के फैन सभी हैं। और आप सभी जो है इनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, और सभी इनके फिल्म के गाने सुनना चाहते हैं। तो भाई, हम गाने एक एक प्ले कर ही रहे हैं। अब काजल जी के बारे में क्या बात करें, इन्होंने बहुत ही अनकन्वेंशनल लुक्स होते हुए, डार्क कॉम्प्लेक्स होते हुए, जहां पर बहुत ही एक टिपिकल या क्लीशियड तरह से हीरोइन को देखा जाता है, इसमें इन्होंने अपने अदायगी से, अपने हुनर से जो है इतना अपना परचम लहरा दिया, ये हम कह सकते हैं। बहुत ही एकदम अलग सा इनका अभिनय था, बहुत ही नेचुरल, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि ये एक्टिंग कर रही हैं, और यही इनकी खासियत रही। तो भाई, बहुत सारी फिल्में इन्होंने की है अपने करियर में, और हालांकि अब हम उनको पहले से थोड़ा कम देखते हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में देखते हैं हम इनको फिल्मों में। और फिल्म बेखुदी से इन्होंने अपना डेब्यू किया था 1992 में, और उसके बाद जो है इन्होंने बाजीगर फिल्म की, जिसका गाना भी आपको सुनवाने वाले हैं, जिसकी फरमाइश की है अय्याज चौधरी इन्होंने। और मैं प्ले करने वाली हूँ एक और गाना जो है फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से, जिसकी फरमाइश की है फिरोज सिंगनपुरिया जी ने और मीना जी ने। तो मीना जी ने मुझे कॉल किया और इन्होंने कहा कि भाई अभी अभी ट्यूनिंग की और इतना अच्छा लगा शो सुनकर, और ये भी बोली कि क्योंकि एक्ट्रेस काजल का जन्मदिन है तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं, तो हम भी अपनी फरमाइश बिल्कुल भेजेंगे और अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे, क्योंकि हम भाई FM रेनबो के बहुत पुराने लिसनर हैं और हमने छोड़ा नहीं है। मैंने कहा भाई आपका स्वागत है और हमेशा ही रहेगा मीना जी। और भाई ये गाना प्ले होगा, उसके बाद बाजीगर का गाना अय्याज चौधरी जी की फरमाइश, और उसके बाद जो है दिग्दर्शन और कविता हमें मेरठ से लिख भेजते हैं, और वो एक गाना सुनना चाहते हैं, वो प्ले करेंगे। पंकज मोहड़ जी का भी गाना इस बीच हम प्ले करने वाले हैं। तो आप सभी बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, हम तुम चल रहा है और आप सभी के मैसेजेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अभी मैं प्ले करने वाली हूँ प्रकाश शिंदे इनकी फरमाइश जो है कुछ कुछ होता है, और पंकज मोहड़ इनकी फरमाइश उससे बाद दुश्मन फिल्म का गाना आवाज दो हमको। तो ये दो गाने बैक टू बैक प्ले होंगे और बाकी फिर बाद में दिग्दर्शन और कविता जो मेरठ से हमें सुनते हैं इनकी फरमाइश किसी डिस्को में जाए ये गाना प्ले होगा। और साथ ही साथ एक गाना जो बाकी है वो है नूरी फिल्म का जो अशोक पाटिल जी की फरमाइश थी, तो ये मैं प्ले करने वाली हूँ। तो आप सभी बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो हम तुम चल रहा है और आप सभी की फरमाइशों के लिए मैसेजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से कई सारे श्रोताओं ने हमें रिक्वेस्ट भेजे हैं क्योंकि एक्ट्रेस काजल का जन्मदिन है तो अपनी शुभकामनाओं के साथ आपने गानों की फरमाइश भी की है। तो ये जो गाना था आवाज़ दो हमको, ये मैंने आकांक्षा जी के लिए भी प्ले किया था। आकांक्षा मनोज सिन्हा जी आई थिंक अहमदाबाद से हमें जो है मैसेज कर रही थी और इन्होंने फरमाइश की थी इन्होंने भी इस गाने की। और बहुत मुझे पता है बहुत सारे गाने बाकी हैं और आप सभी के गाने एक एक करके प्ले करने की कोशिश है मेरी, लेकिन आप सभी जानते हैं समय हमारे पास बहुत कम है। और यहाँ पर मुझे अजय साखरे जी ने भी अपनी फरमाइश भेजी और विजेंद्र घाटोल जी की भी है, वैदेही जी की है और साथ ही साथ मुझे संजय दर्शन जी ने भी बाद में मैसेज भेजा था, वो पढ़ते पढ़ते आपकी बाकी आगे की बातें पढ़ना रह गया था। तो ये आपकी फरमाइश मैं ट्राई करूँगी कि प्ले करूँ। अभी फिलहाल ये दिग्दर्शन और कविता इनका मेरठ से जो इन्होंने मैसेज किया है इनका गाना मैं प्ले करने वाली हूँ। और वाकई यकीन मानिएगा काफ़ी मुश्किल है आप सभी की फरमाइशें मैं प्ले कर पाऊँ क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, 12 ही मिनट बचे हैं। तो अभी किसी डिस्को में जाए प्ले करूँगी, उसके बाद आ जा रे जो नूरी फिल्म के गाने की फरमाइश रजनीकांत जी ने की थी, तेरे नैना अजय साखरे जी ने फरमाइश की थी और वैदेही ने आवारा भंवरे। तो ये सारे गाने तो नहीं प्ले हो पाएंगे पर देखते हैं कितने आप सभी के लिए प्ले हो पाते हैं। बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

हमदुम चल रहा है 107.1 FM रेनबो पर और आप सभी के मैसेजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें विजेंद्र घाटोल जी ने अकोला से मैसेज किया और वो कॉल भी कर रहे थे, लेकिन जैसे कि आप सब समझ ही रहे हैं कि बाद बाद में हम तुम में इतना मुश्किल हो जाता है, कुछ भी करना समय ही नहीं बचता। तो विजेंद्र जी, आपके लिए मैं प्ले करने वाली हूँ तेरे नैना, आपके लिए और अजय साखरे जी के लिए, जिन्होंने इंदौर से हमें मैसेज किया। यहाँ पर मुझे मैसेज आया है हीरामणि वर्मा जी का भी, और जो गाना इन्होंने रिक्वेस्ट किया है ये नहीं हमारे पास उपलब्ध है। और ये जो है हमें भाटापारा छत्तीसगढ़ से मैसेज कर रहे हैं संजय पाटिल जी, उषा पाटिल जी का हमें मैसेज आया है, और साथ ही साथ महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी इनका भी मुझे मैसेज आया है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। दत्तात्रेय आडट जो व्यापुर से हमें करते हैं मैसेज, उनका भी आया हुआ है। अब यहाँ पर मुझे जो है शैलेश नेगाड़े जी, विक्रम पश्ते और चेतन कानोजे, इनकी तरफ से भी मैसेज आया है। ये आवारा भवरे सुनना चाहते हैं, कोशिश रहेगी कि प्ले कर पाऊँ। अंधेरी मुंबई से ये हमें मैसेज कर रहे हैं, धन्यवाद आपका भी। हितेंद्र दास हमारे साथ बने हुए हैं असम से, और यहाँ पर जो है

रचना साचन मुझे मैसेज करती हैं और इन्होंने लिखा है मोटिवेशनल सॉन्ग ये डेडिकेट करना चाहती हैं, पर हमें जैसे हमारे पास कमी है समय की तो नहीं हम प्ले कर पाएंगे, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ पर मैसेज आया है कर्नाटक से और इनका नाम मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि एग्जैक्टली नाम क्या है। जगक्का नाम है शायद इनका, और श्यामला प्रकाश जी हमें मैसेज करती हैं, ये हैं कर्नाटक से। और फिर यहाँ पर और एक मैसेज आया है और शायद सेव नहीं है तो मैं नाम खोज रही हूँ इनका। इन्होंने नाम नहीं लिखा है अपना, तो मैं आगे बढ़ते हुए सुनील गायकवाड़ जी हमें मैसेज करते हैं हम तुम के लिए, और सुशील यादव जी का मैसेज आया है, हर्षदा जी जर्मनी म्यूनिक से हमें मैसेज करती हैं, अतिंद्र जोशी हमें मैसेज कर रहे हैं, शुभदा जी का भी मैसेज पहुंचा है, चेतन कुमार जी भी हमें गया बिहार से मैसेज करते हैं, और आगे बढ़ते हुए मुकेश कश्यप जी भी मैसेज भेज रहे हैं, अरविंद कुलकर्णी जी ने भी मैसेज किया है। यहाँ पर मुझे नितिन स्वामी जी एरोली से मैसेज कर रहे हैं, राजशेखर बंडगर सोलापुर से मैसेज करते हैं, नितिन स्वामी एरोली से, और मैं देख रही हूँ एनएम पाटिल जी कुरला से हमें मैसेज कर रहे हैं, अशोक पाटिल जी वर्ली से बने हुए हैं, और बहुत अच्छी बात है संजय दर्शन जी ने भी लिखी थी, लेकिन ये काफी लंबा है और अभी प्ले करने का समय नहीं है क्योंकि अगला कार्यक्रम यानी हिंदी गानों का कार्यक्रम, माफ कीजिएगा अंग्रेजी गानों का कार्यक्रम बहुत जल्द शुरू होने वाला है, और शीन आ चुकी है स्टूडियो में लेकर के अपना प्लेलिस्ट, तो मैं आखिर में आप सभी के लिए तेरे नैना ही प्ले कर पाऊंगी, तो बने रहें सुनते रहें 107.1 FM रेनबो म्यूजिकली योर्स। मैं हूं वैशाली, मुझे दीजिए इजाजत और मिलूंगी आपसे आने वाले 10 तारीख को सुबह 11 से दोपहर 2 के बीच।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास तथा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा तथा अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
2: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय

0: सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है।
2: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस साल जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 जजों की स्वीकृत संख्या पूरी होने के बावजूद केवल 65,000 से अधिक मामलों का ही निपटारा हो सका, जबकि पिछले साल अदालत में 75,000 से अधिक नए मामले आए। हर साल नए मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों से अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेज होगा और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग का भी आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करकर प्रदर्शन करकर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े जोखिमों से अवगत है। श्री वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित वैश्विक घटनाक्रमों और विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय नियामक दृष्टिकोणों से अवगत रहती है। इसमें डिजिटल वातावरण में बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों की ओर से अपनाए गए उपाय भी शामिल हैं। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए केंद्र सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मेटा को स्पष्ट कर दिया गया था कि वे मध्यवर्ती की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं और वे ही तय करते हैं कि उनके मंच पर दी गई सामग्री किसे प्राप्त होगी। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा एक्स कॉर्प तथा गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश ने आज अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को भी अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दोनों अनुच्छेदों को निरस्त करने के बाद राज्य में बहुत विकास हुआ है।
4: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहाँ के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा तो नागरिक तो वहाँ खुश है।
1: जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।
5: जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी उनका हक जो था

0: वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
1: भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी। तथाकथित यौम इस्तेहसाल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार के दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी लोग नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।
2: जो दूसरा मॉड्यूल है पेट्रोल बम फेंकने का और उनको बनाने का ट्रेनिंग दी गई ISI के जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा, और वहाँ उनको बताया गया कि आप पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी के एस्टेब्लिशमेंट या किसी यूनिफॉर्म बंदे का टारगेट करने के लिए उनकी रेकी करो और आपको पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहाँ भी ये जाके आए 8 लोग और वहाँ इनको लोकल एक सपोर्ट मुहैया करवाई।
1: झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मानसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। इस बीच भाजपा ने इन प्रदर्शनों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की चुप्पी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि उन्होंने झारखंड का दौरा इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस राज्य में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। श्री पात्रा ने राहुल गांधी की आलोचना की है कि उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मासूम बच्चों को संवाददाता सम्मेलन में घसीटा।
3: जो बच्चे आज राहुल जी के साथ थे उन्हें मैं बहुत प्यार से कहना चाहूंगा कि निडर रहना, बिल्कुल आप घबराना मत। हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, हम सब पार्टीज हो सकते हैं, मगर आप हमारे हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम ऑपोजिशन की और राहुल गांधी की झूठी नैरेटिव यहां एक्सपोज करना चाहते हैं।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। हैदराबाद में आज ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक संपन्न हुई। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हुई दो दिन की बैठक का विषय था सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह ने कहा कि भारत की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का उल्लेख इस दौरान किया गया। उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा, सुशासन और सतत विकास की नींव है। बैठक में ब्रिक्स के सदस्यों ने कानून प्रवर्तन विशेषज्ञों के ब्रिक्स नेटवर्क के लिए भारत के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की। यह नेटवर्क भ्रष्टाचार के मामलों में वांछित भगोड़ों का पता लगाने में सहायता करेगा और प्रत्यर्पण में सहयोग भी करेगा जो वर्तमान कानूनी प्रक्रियाओं का पूरक होगा। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। ये ढांचा भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के इस आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात पर सुगम बनाने के लिए व्यापक नीति और प्रक्रियात्मक संरचना प्रदान करता है। इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ई कॉमर्स निर्यात का लाभ भारतीय निर्माताओं तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिले और साथ ही नियामक निगरानी भी बनी रहे। सरकार ने कहा है कि मुंबई देश में फिल्म, टेलीविजन प्रसारण, डिजिटल मीडिया और कंटेंट निर्माण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यह भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एलमुरुगन ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा, फिल्मों की विरासत और फिल्म सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए विकास, संचार तथा फिल्म सामग्री के प्रसार की केंद्रीय योजना लागू की है। केंद्र सरकार पत्रकार कल्याण योजना लागू करती है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि योजना के अंतर्गत सरकार ने 2014-15 से 2025-26 तक 456 मीडिया कर्मियों या उनके परिवारों को 19 करोड़ 41 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% तक रखा गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में मामूली 10 अंकों की बढ़त हुई और ये 24,625 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 25 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.13 रुपए पर बंद हुआ।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इन खिलाड़ियों में ईशरानी बरुआ, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया और शियांशी वलीशेट्टी भी शामिल हैं। वहीं महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठक्कर तथा मिक्स्ड डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Parliament passes bill increasing the strength of Supreme Court judges to 37. Lok Sabha clears legislation giving legal recognition to digital banking records. Meta CEO Mark Zuckerberg apologizes to Government of India over child abuse material, deepfake content and platform lapses. Nation marks 7 years of abrogation of Articles 370 and 35A. Prime Minister Narendra Modi says constitutional changes ushered in development and empowerment in Jammu and Kashmir and Ladakh. New Delhi asks Islamabad to end bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, dismantle terror networks and vacate illegally occupied Indian territories. And at Korea Masters Badminton Tournament, Tanvi Sharma and Anmol Kharb among 7 Indians to enter second round of women's singles. The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in the Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said, in view of the increasing workload of the judiciary, the evolving nature of judicial matters and the emerging constitutional and legal interpretation issues, increasing the number of judges in the Supreme Court is the need of the hour and a timely reform. Our correspondent reports that the strength of the judges of the Supreme Court was last increased from 30 to 33, excluding the Chief Justice of India, by amending the original act through the Supreme Court Number of Judges Amendment Act 2019.
6: The increase in judge strength is one of the viable solutions for tackling the pending backlog of cases in the Supreme Court.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहां खुश है।
0: विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू होने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए आज भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्सकॉर्प तथा गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मान हानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा है। तथाकथित यौमे इस्ते साहल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले 12 रेट माइनिंग श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग हादसे का बचाव अभियान हाल के वर्षों के सबसे कठिन अभियानों में से एक था। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार

की मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दोस्तों, कुछ लोग ज़िंदगी से चले भी जाएं तो भी दिल की बस्तियों से कभी रुखसत नहीं होते। वो ख्याल बनकर साथ चलते हैं, ख्वाब बनकर आंखों में ठहरते और याद बनकर हर धड़कन के साथ धड़कते हैं। शायद इसी एहसास का नाम इश्क है, जहां तसव्वुर में होने वाली मुलाकात ज़्यादा मायने रखती है बनिस्बत रूबरू मुलाकातों के। आइए हम और आप मिलकर इस कैफियत में एक साथ डूब जाते हैं।
1: वो गुजर रहे हैं,
0: कुछ खास है ये कैफियत।

0: हो।
1: रंग महफिल की गजलों का रंग तो है ही, साथ ही इसका रंग आप ही हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप यूं ही हमारे साथ लगातार बने रहिएगा।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
0: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
0: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
1: दोस्तों, इश्क जब अपने इंतहा पर पहुंचता है तो मोहब्बत सिर्फ एहसास नहीं रहती, वो जीने की वजह बन जाती है। फिर किसी का साथ खुशी नहीं, जज्बात बन जाता है, ज़रूरत बन जाता है, और उसकी जुदाई दिल का सबसे गहरा ज़ख्म। पता है, मोहब्बत जैसी शय इतनी नाजुक होती है कि उसे लफ्ज़ों से बयां कर पाने का अख्तियार

हर मोहब्बत की अपनी पहली एक दस्तक होती है, जिसके आगाज़ का रंग भले ही अलग हो, लेकिन मोहब्बत के बाद दिलों जहन में होने वाली तब्दीलियां तकरीबन एक जैसी होती हैं। हाँ, इसके अंजाम में फ़र्क हो सकता है और मोहब्बत का हर अंजाम तय होता है इस बात से कि दोनों की मोहब्बत में उसकी तासीर कितनी है। समझ रहे हैं ना आपकी हम क्या कह रहे हैं? अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, चलिए गज़लों के ज़रिए मिलकर समझेंगे।

0: मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
6: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

दोस्तों, हर कहानी का अंजाम हमारी मर्जी का नहीं होता। कुछ ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, कुछ रिश्ते वक्त की गर्द में धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी जीने का हुनर तो यही सिखाता है कि हम हर किसी के साथ यानी हर कमी के साथ जीना सीख जाए। और यही हमें जीवन सिखाता है, जो साथ है उसकी कद्र करें, जो चला गया उसे दुआओं में याद रखें, क्योंकि हर खुशी मुकम्मल हो ना हो लेकिन फिर भी ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है। तो चलो यूं ही सही, इसी खूबसूरत सोच के साथ पेश खदमत है ये अगली गज़ल, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो इस वक्त हमारे साथ है।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में

0: जानकर ही दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: दोस्तों, हर महफिल की तरह आज की ये महफिल भी अब अपने इख्तिताम पर की जाने पर, उम्मीद है आज की गजलों ने आपके दिल के किसी न किसी कोने को जरूर छुआ होगा। तो अब चांद को दीजिए इजाजत, बिछड़ भी जाए तो रिश्तों की रोशनी रखना, किसी कभी किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। इसी दुआ के साथ दीजिए इजाजत अपने चांद को। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में

धन्यवाद चांद, बहुत ही खूबसूरत शो के लिए, बहुत खूबसूरत गीत संचयन के लिए, गजलें और ठुमरी का बेजोड़ मिश्रण।

सुनने को मिला आज। फिलहाल हम बढ़ चुके हैं घड़ी की उस तरफ जहां उसने बताया कि 12 बज चुके हैं और दिन का कैलेंडर भी बदल चुका है, और क्योंकि हम अगले कैलेंडर में दाखिल हो चुके हैं अगले दिन में, तो सुनते हैं इस दिन के पहले घंटे के मुख्य समाचार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा में डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक भी पारित हुआ। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डी फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में अफ्रीका दिवस के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अफ्रीका के विकास में उसकी प्राथमिकताओं के अनुसार सहयोग कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्र में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास लैंडमाइन विस्फोट में सेना के दो जवान घायल। भारतीय रेल ने कंटेनर ट्रेन चलाने वाले ऑपरेटरों के लिए नियमों में बदलाव को मंजूरी दी। अब कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर एक ही अखिल भारतीय लाइसेंस से भारतीय रेल के सभी मार्गों पर कंटेनर ट्रेन चला सकेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। महाराष्ट्र के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टरों के अनिश्चितकालीन हड़ताल से ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। राज्यसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वर्ष 2024-25 के सर्वेक्षण में देश के किसी भी जिले में हाथ से मेला ढोने वाले कर्मी नहीं पाए गए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले 12 रेट माइनिंग श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया, और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, और आप जुड़ चुके हैं सहजता के साथ हमारे दैनिक कार्यक्रम दैनिक प्रस्तुति जीरो और शो में। मेरे यानी रजत के साथ आप सभी का स्वागत बस कुछ ही क्षणों में।

0: तेरे छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो।

0: मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
4: ठीक है।
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो आयकर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है।

तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप

प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

नमस्कार, प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा में डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक भी पारित हुआ। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारेंडोस से मुलाकात की। भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र की संभावनाओं पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने नई दिल्ली में अफ्रीका दिवस के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अफ्रीका के विकास में उसकी प्राथमिकताओं के अनुसार सहयोग कर रहा है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की छठी बैठक कल ताशकंद में हुई। देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण

रक्षा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर चर्चा की। भारत ने पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्र में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास लैंडमाइन विस्फोट में सेना के 2 जवान घायल। भारतीय रेल ने कंटेनर ट्रेन चलाने वाले ऑपरेटरों के लिए नियमों में बदलाव को मंजूरी दी। अब कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर एक ही अखिल भारतीय लाइसेंस से भारतीय रेल के सभी मार्गों पर कंटेनर ट्रेन चला सकेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। महाराष्ट्र के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से ओपीडी सेवाएं प्रभावित। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाओ अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले 12 रेट माइनिंग श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा तथा अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आकाशवाणी रिंबू पर करते हैं हम एक बार फिर से आपका स्वागत अपने एक नए कार्यक्रम में जिसका नाम है सुहानी रात। तो आइए मिलकर इन सुहाने गीतों के साथ, मधुर गीतों के साथ बनाते हैं अपनी रात को सुहावना और सुनते हैं कुछ बेहतरीन गीत।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

आकाशवाणी रेनबो पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहानी रात, और अब से कुछ ही पल में लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए हिंदी में समाचार।

नमस्कार। मध्यरात्रि के 2 बज चुके हैं। पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा में डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक भी पारित हुआ। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस से मुलाकात की। भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र की संभावनाओं पर इस मुलाकात में चर्चा की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में अफ्रीका दिवस के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अफ्रीका के विकास में उसकी प्राथमिकताओं के अनुसार सहयोग कर रहा है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की 6वीं बैठक कल ताशकंद में हुई। भारत ने पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्र में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास लैंडमाइन विस्फोट में सेना के 2 जवान घायल हो गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। महाराष्ट्र के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से सेवाएं बाधित। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, छत्तीसगढ़

भारतीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। ये थे मुख्य समाचार अब तक के। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भुलाए ना बने मेरे यानी रजत के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। आप सभी का इस कार्यक्रम में रहेगा स्वागत। मिलते हैं, जुड़ते हैं बस थोड़ी देर में।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत,

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा में डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक भी पारित हुआ। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस से मुलाकात की। भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र की संभावनाओं पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने नई दिल्ली में अफ्रीका दिवस के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अफ्रीका के विकास में उसकी प्राथमिकताओं के अनुसार सहयोग कर रहा है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई का आग्रह किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की छठी बैठक कल ताशकंद में हुई। भारत ने पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्र में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास लैंडमाइन विस्फोट में सेना के 2 जवान घायल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। महाराष्ट्र के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से सेवाएं बाधित। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा तथा अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: जी खड़े खड़े क्या देख रहे हैं?
1: कमाल है, उस चांद को घंटों देखता रहा, उसने एक बार भी नहीं टोका।
0: तो चांद को ही देखिए ना।
1: मगर वो सांस नहीं लेता।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

सुबह के ठीक 4 बज चुके हैं और कुछ सेकंड्स भी हो चुके हैं और ये समय है अब तक के मुख्य समाचारों का, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा में डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक भी पारित हो गया है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीफेक सामग्री और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस से मुलाकात की। भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र की संभावनाओं पर भी दोनों के बीच चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में अफ्रीका दिवस के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अफ्रीका के विकास में उसकी प्राथमिकताओं के अनुसार सहयोग कर रहा है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में यह मुद्दा उठाया। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की 6 बैठक कल ताशकंद में हुई। भारत ने पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्र में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास लैंडमाइन विस्फोट में सेना के 2 जवान घायल हुए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। महाराष्ट्र के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से सेवाएं बाधित हुई हैं। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। 4:42 समय है कार्यक्रम सारे गामा का। नए पुराने फिल्मी गीतों के इस मधुर सफर को बस अब थोड़ी देर में हम करेंगे शुरू मेरे यानी रजत के साथ। इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी, देश और दुनिया के कोने कोने और हर हिस्से से जुड़ने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए अगर नहीं किया तो। मैं हूं रजत, आप सभी का स्वागत प्रोग्राम सारे गामा में।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती। सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
8: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे।

एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।